हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
1: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
0: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412-111-111.
2: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
2: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
3: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
2: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: महिला असुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के अर्थद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
0: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ

0: नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर

0: 听听。ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित

0: निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केन्द्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
7: Japanese tire expert for over 100 years, Yokohama, ab Moradabad mein. Visit कीजिए Yokohama Club Network. Chawla tires और Pi premium tires की wide range, alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
8: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
7: Visit Yokohama Club Network, Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
9: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
3: बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।
10: यार माना कि तुम जो करना चाह रहे हो उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन वक्त लगने दो, जब वो वक्त आपको अच्छा रिजल्ट देगा ना तो आप खुद ही खुश हो जाओगे। और हर एक अच्छी चीज ना वक्त मांगती है, और जो चीज वक्त मांगती है ना उसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होता है। सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की सुबह के साथ मैंने एंट्री दे दी है आपके रेडियो सेट पे।

जी हाँ श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के पहले सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, आज शनिवार का 9 मई की तारीख है। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, जहाँ देखिए ना, कुछ लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहे हैं। वहीं हमारी घर की महिलाएं कामकाज में लग चुकी हैं सुबह सुबह, क्योंकि भाई बच्चों के लिए तो तैयारी हो गई है, लेकिन अब पतिदेव के लिए भी तैयारी करनी है ना उनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भाभी जी आप लगे रहिए। फिलहाल आज के दिन की आपको देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। आज का एक बहुत ही खूबसूरत विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आपको सब पसंद नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको सब लोग पसंद नहीं करेंगे, ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और आप हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते हैं, ये भी एक छोटी सी बात है, बट कई बार हम इसको भूल जाते हैं। हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में कभी कभी ना खुद को भूल जाते हैं श्रोताओं। तो आज की सुबह ये नहीं करना है, सबसे पहले आप खुद को खुशी दीजिए। अगर आप हैप्पी हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। श्रोताओं, आज की बहुत ही बेहतरीन सुबह है। क्या कहता है आज का मौसम और कैसा जाएगा आज का ये पूरा दिन, और आज का दिन क्यों खास है, ये तमाम सारी बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल के हालचाल बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। 9837896896 स्टूडियो का नंबर बहुत आसान है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपने दिल के हालचाल बता सकते हैं। आज का जो ये बेहतरीन मौसम है, इसकी खासियत और बढ़ जाएगी जब ये गाना आप सुनेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक लाइंड अप कर दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे, निकल गया है भाई, एंजॉय कीजिए इसको। वॉल्यूम बढ़ा के सुनते रहिए आरजे आनंद को, कहीं मत जाइए, रेडियो की सोई बिल्कुल मत घुमाइए। थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी दिल से दिल तक। ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और मुरादाबाद रेडियो। सुन रहे हैं आरजे आनंद को, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो CL गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
3: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें।

0: और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
1: हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग मेरी आरजी आनंद के साथ। मेरी आरजी गुड गुड वाली मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग।
0: सुबह के 7 बजते ही मेरे अंदर जाग जाती है ये विद्या बालन।
2: हेलो, सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है?
0: अरे नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली।
2: गुड

ओए मखणा, क्या गाना है यार, व्हाट अ सॉन्ग। सच बताऊं तो ऐसे गाने सुन के बड़ा मजा आता है, एकदम फ्लैश बैक में चले जाते हैं। बॉस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। जी हाँ श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी का जो टाइम है वो आपको बताने का हो गया है। बॉस, टिक टिक करके आपकी जो घड़ी है उसे जरा मिला लीजिए मेरे दोस्त। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 8:36, 12 सेकंड 9 मई की सुबह, और आज है शनिवार का दिन, यानी कि सैटरडे सैटरडे करने का दिन। चलिए श्रोताओं, अब इस वक्त आप चाहे दिल्ली रोड पे हो या गागन रोड पे, या हो स्टेशन रोड पे, या हो फिर आप ताड़ी खाने की तरफ, आप जहां भी आनंद को सुन रहे हैं, एकदम वार्म वेलकम आपका करते हैं यार, खुली बाहों के साथ स्वागत है आपका अपने ही स्टेशन एफएम मुरादाबाद पर। और जान लेते हैं आज के मौसम का हालचाल। तो भैया आपको बता दें, आज शहर का तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस और रहने वाला है, और मौसम पूरी तरह सनी सनी यानी कि धूप वाला बना हुआ है, और हवा लगभग 5 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। बॉस, ह्यूमिडिटी यानी हवा की नमी की बात करें तो 63% जो है, 63% है आज की ये हवा की नमी, ह्यूमिडिटी। एंड इसीलिए भैया ये जो मौसम है थोड़ा सा चिपचिपा महसूस हो सकता है आपको मेरे भाई। वहीं अगर एयर क्वालिटी की बात करूँ तो 58 यानी कि फिलहाल हवा की गुणवत्ता ठीक ठाक है और सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित मानी जा रही है आज की ये हवा। आज का दिन का अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो करीब 33 डिग्री तक ये जा सकता है। तो भैया पानी पीते रहिए, और धूप में अगर निकल रहे हैं तो जरा ध्यान रखिए अपना, और कोशिश कीजिए कि जब अगर आप 12 से 4 के बीच धूप में निकले पाजी, तो अपने लिए कोई हल्का सा कपड़ा, गमछा या कोई कैप लगाकर ही घर से बाहर निकलें। तो चलिए फिलहाल ये हमने बता दिया आपको आज के मौसम का हाल, अभी जान लेते हैं आज के दिन का हाल।

श्रोताओं, देखिए हर दिन की तारीख बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है और हर दिन का इतिहास बेहद ही महत्वपूर्ण होता है भारत और विश्व के लिए। तमाम सारी ऐसी जानकारियां हमें मिलती हैं जो शायद हमें कहीं और ना मिले, लेकिन जब हम इतिहास खंगालते हैं तो तमाम सारी हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है और बहुत सारी जानकारियाँ जो कहीं ना कहीं हमारे दिन के लिए और हमारे जीवन के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो श्रोताओं, आपको बता दें 1540 में महाराणा प्रताप की जयंती यानी कि मेवाड़ के महान शासक और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले महाराणा प्रताप जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आपको बताते चलें, आज ही के दिन सन 1653 में ताजमहल का निर्माण, जी हां, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाया गया ताजमहल का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था यानी कि 9 मई को। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें श्रोताओं, गोपाल कृष्ण खोगले का जन्म आज ही के दिन हुआ था सन 1866 में, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के लिए राजनीतिक गुरु का उनका जो जन्म था वो आज ही के दिन हुआ। और आपको बताते चलें सन 2003 में गूगल एड्स, जी हाँ, गूगल एडसन आज ही के दिन मतलब जो है इसकी शुरुआत हुई, दुनिया की सबसे बड़े ऑनलाइन विज्ञापन नेटवर्क की जो शुरुआत हुई थी वो आज ही के दिन शुरुआत हुई थी सन 2003 में, यानी कि दिन था 9 मई का। अब देखिए श्रोताओं, जैसे हम बताते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो खास और कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण होता है हर दिन की तारीख में, हर दिन के इतिहास के पन्नों में, वैसे ही महत्वपूर्ण है ये वो जानकारी जो सबको पता होनी चाहिए। और आप सभी को पता है ना, आज के ज़माने में सबके पास स्मार्टफोन है, सब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानना भी जरूरी था दोस्त। और आज के दिन 1945 में विजय दिवस यानी कि 8 मई की देर रात को मैस्को के समय अनुसार 9 मई निजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद जो है विजय दिवस मनाया गया आज ही के दिन। तो श्रोताओं, ये कुछ आज के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके साथ साझा करी मैंने इस प्रोग्राम के जरिए। और हमारी कोशिश होती है कि आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से आपको वो तमाम सारी जानकारियां हम दें जो शायद आपको कहीं और ना मिले, है ना। तो बस ऐसी जानकारियां आगे भी आपके लिए आती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही आनंद को ट्यून इन रखिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना मोस्ट हैपनिंग और अमेजिंग रेडियो शो जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। आपकी मॉर्निंग गुड नहीं, अब बिंदास होती है आरजे आनंद के साथ। फिलहाल इस मॉर्निंग को बिंदास बना सकते हैं आप अपने बातों के साथ, अपने विचारों के साथ। आप हमें अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं, अपने संदेश मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837889896। भैया कहाँ कहाँ है जो लाइट नहीं आ रही है आज की सुबह, आप ज़रा मुझे ये भी बताइएगा कितनी जगहों पर सुबह सुबह लाइट गायब है। आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, सुबह लाइट आई थिंक 7 बजे के समथिंग लाइट गायब हो गई थी, तो जरा आप मुझे बताइए आपके एरिया में लाइट है या आपके यहां पर भी लाइट गायब हो चुकी है। मैसेज करिएगा 9837896896। स्टूडियो का नंबर मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल अब बताता हूं आने वाला गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना निकाल दिया है मैंने आज की सुबह आपके लिए। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे मैं और आप, लौट कर आएंगे तो कुछ और खास बातें जो आपको बतानी है। ये गाना तो बड़ा ही सुपर डुपर हिट हुआ था और इस गाने में जो अदाएं दिखाई थी ना बीबो ने, मतलब मानना पड़ेगा यार, बहुत ही खूबसूरत गीत निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ों में इस गाने को आप एंजॉय करेंगे आज की सुबह। सुन रहे हैं आप आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो सुबह से शाम तक आपको एंटरटेनमेंट का डोज देता है और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाता है। फ्रॉम द फिल्म मुझे कुछ कहना है से निकाल दिया है मैंने बहुत ही खूबसूरत गीत, आप इंजॉय कीजिए, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

आशा ताई उदित नारायण साहब की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में खूबसूरत सी गीत का आनंद उठाया आपने। आनंद के साथ हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन गर्ल्स एंड बॉय, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। शनिवार की बेहतरीन सुबह आप सभी का इस्तकबाल करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं, एक लोकल फॉर वोकल की खबर बहुत ज़रूरी है, फटाफट से आपको ये जानना। लेकिन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेव करके रखते हैं, अभी थोड़ी सी देर के बाद ये लोकल फॉर वोकल की अपडेट हम आपको पता लगेगी। मेरे साथ आप ज़रा ऐसे ही चिपके रहिए और हमारी दिल की बातों को ज़रा दिल की गहराइयों के साथ ऐसे ही

0: सुनते रहिए, बहुत ज़रूरी है बाबा। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कुछ ख़ास बातें। देखिए आप सभी को पता है मदर्स डे पे सुपर मॉम्स की भी तलाश कर रहे थे, बहुत सारी सुपर मॉम्स हमें मिली हैं। कल बैक टू बैक आप उनकी स्टोरी सुन पाएंगे हमारे स्टेशन पर, तो बस आप जो है ना ट्यून इन रखिएगा, बहुत सारी कड़क अपडेट हैं। अगर आप चाहते हैं कि और किसी सुपर मॉम्स को भी रेडियो पर आप सुनना चाहें, या किसी ऐसी लेडी को जानते हैं जिसको आप चाहते हैं कि रेडियो पर उन्हें हमें फ़ीचर करना चाहिए, तो उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़रूर से हमें बताएं ताकि हम उनको यहाँ पर लेकर आएँ। दोस्तों सुबह सुबह अगर आप ये पांच आदतों को फॉलो करते हैं तो आप पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं, पूरी तरह हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए गुनगुना पानी, ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप अपनी सुबह की शुरुआत करें तो एक गिलास गुनगुने पानी से ही अपने दिन की शुरुआत करें। रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लो करती है और आपका पेट भी पूरी तरह साफ रहता है श्रोताओं। और बस एक चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि सुबह उठते ही आपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखते हैं, जैसे हम नींद से हमारी आंख खुलती है तो हमें तुरंत फोन नहीं बल्कि जो नेचुरल प्रकृति की रोशनी है उसके दर्शन करने चाहिए, बाहर का जो नज़ारा है उसको देखना चाहिए, है ना। सुबह उठते ही आंख खुले तो ये नहीं कि फोन चलाओ, नहीं भैया, सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर की जो नेचुरल रोशनी है उसका आनंद लो ना यार। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ। आज के दिन की आपको ढेरों मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। आई होप ये जो ब्यूटीफुल सा दिन है आपको ढेर सारी खुशियां दें, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। कहते हैं ना दोस्तों सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे की पसीने में होती है, और ये लाइन मुझे पहुंचाई है यहाँ पर आज की सुबह राजू जी ने। सुप्रभात लिखते हैं राजू जी, गुड मॉर्निंग आनंद, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ राजू जी। ये मुझे मैसेज कहाँ से किया है इन्होंने? अह ये तो उन्होंने लिखा ही नहीं है, चलिए कोई नहीं। खैर राजू जी अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो ज़रा कोशिश करिए कि आप हमें अपने एरिया का नाम भी बताएं जहाँ से आपने हमें मैसेज किया है। और भी बहुत सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जैसे रियाना जी का संदेश मेरे पास पहुंचा है आज की सुबह, सुप्रभात का मैसेज पहुंच गया है मेरे पास। दुर्गेश सैनी जी का कल्याणपुर मुरादाबाद से जुड़े हैं। मेरे पास अंजुम जी का मैसेज आ रहा है, नमस्ते आनंद जी गुड मॉर्निंग। और मेरे पास विवेक जी का भी मैसेज आया है, नमस्ते गुड मॉर्निंग सर, सुबह सुबह निकल रहे हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पर, आप भी निकल चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी निकल चुका हूँ सर, थैंक यू। एक मैसेज और आया है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रणव है, गुड मॉर्निंग प्रणव। और इन्होंने मुझे मैसेज किया है TMU से, ऑलराइट। ये मुझे लिखते हैं आनंद जी सुबह सुबह अच्छे गीत सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और ताज़ा तरीन हो जाते हैं हम आपका रेडियो सुन के, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे गाने आप प्ले करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका नाम बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय नमस्ते सुप्रभात आनंद जी, आज का मौसम बहुत ही औसम है, बाकी आपने मौसम के हालचाल बताएं मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम रिंकी यादव है, हेलो रिंकी जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है मेरे पास, हेलो आनंद जी, आज का सुबह का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत है और इस वक्त मैं योगा करके आ रही हूँ, अरे वाह क्या बात है। हाय माय नेम इज शैली, हाय शैली गुड मॉर्निंग। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी माय नेम इज पिंकू, हाय पिंकू गुड मॉर्निंग, यार आपका नाम बड़ा अच्छा है, पिंकू पकड़े पका पपीता, पका पपीता पिंकू पकड़े, कुछ वो एक मूवी में मुझे सडनली याद आ गया है। एंड ये मुझे लिखते हैं आनंद जी, बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके रेडियो लिसनर से कि जीवन में अप डाउन जो है, अप्स एंड डाउन सबके साथ होते हैं लाइफ में, तो आप जो है अपने अप डाउन वाले फेस से डरे नहीं बल्कि डट के सामना करें। जिंदगी में अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो कल उसका सोल्यूशन मिलेगा, तो आप खुश भी होंगे और सोल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करें। आई एग्री विद यू 100%। अच्छा दोस्तों चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत ज़रूरी है अपने सामुदायिक के लोगों से ये जानना। आप सभी को पता है ना डिजिटल ज़माने के साथ साथ अब AI का ज़माना हो गया, जहां चैट GPT और तमाम सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो हमारे काम को बड़ा आसान बना रहे हैं, मतलब जहां हमें इतना टाइम लग जाता था चीजों को डिजाइन करने में, वहीं अब विद सेकंड्स आपकी चीजें रेडी हो जाती हैं। तो आज की सुबह आपको क्या लगता है, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ना AI आ गया है हमारी जॉब छीन लेगा, AI आ गया है जॉब खतरे में आ गई है। अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ें जो AI कभी नहीं छीन सकता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो AI कभी नहीं ले सकता है, भले AI आ गया है तो आप मुझे बताओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आने से लोगों में डर है, आई नो दैट, बहुत ये डर जो है बहुत स्वाभाविक है, बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, बट सी और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है आपके हिसाब से AI नहीं ले सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं ले सकता है या वो नहीं कर सकता है, तो ज़रा संदेश पहुँचाइएगा अपने 9837 896 896। जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हम कह रहे हैं वो हमारी जॉब छीन लेगा, चलिए जॉब मैं मानता हूँ कर लेगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है भैया वो तो ये कर ही नहीं सकता है, वो तो ये चीज़ कर ही नहीं पाएगा, आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, हो सकता है आपका एक बढ़िया से जवाब किसी के मन को और दिल को शांति और सुकून दे, है ना, शांति और सुकून दे। हाँ मतलब अब सही बोला मैंने, कभी कभी होता है यार। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिलहाल स्टूडियो क्लॉक में 9 बज चुके हैं यार, है ना, तीसरे घंटे की शुरुआत होगी, बस थोड़ी सी देर में मिलेंगे, कुछ एड ब्रेक के बाद मैं लौट कर आता हूँ, फिर इसके बाद कुछ और कड़क अपडेट आपको बतानी है। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप ट्यून रहिए, आरजे आनंद को ऐसे ही सुनते रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने, तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री,
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
7: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
8: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
7: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
8: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
9: कॉल 7500153841।
10: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
11: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
0: तीसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, दिस इज माय लास्ट आवर, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आनंद के साथ हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अब ट्रेन टिकट बुक करना होगा और भी आसान, मतलब बहुत ही तेजी से आसान हो गया है और बहुत ही सुपर फास्ट हो गया है। कैसे, अगर आपको ये जानना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आरजे आनंद अभी लेकर आएगा एक अलग अपडेट इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कुछ और खास बातें अभी आपको बताने वाला हूँ, एक प्रधानमंत्री की योजना के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी प्रोग्राम में। जी मॉर्निंग मैगजीन शो है, अगर आप कहीं भसड़ में हैं, कहीं ट्रैफिक जाम में हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप दिल्ली रोड पे हैं या गागन पे, या हैं आप कार्ड रोड पे, या आप निकल गए स्टेशन रोड पे, आप जहां भी हैं आप आजी आनंद को ट्यून इन रखिए, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाइए, कानों की ढक्कन थोड़ा खोल के रखिए, क्योंकि कुछ खास और अहम और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप तक पहुंचेंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। बस आप जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना जो मोहब्बत का ये एक समा आपने बना रखा है ना, उसको मेंटेन रखिए यार। चलिए सैटरडे की सुबह शुक्राना करते हैं ऊपर वाले का, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, उस परमपिता परमात्मा का, उस ईश्वर का जिसने मुझे और आपको आज की ब्यूटीफुल सुबह देखने का मौका दिया है। तो आइए मिलकर इसी गीत के साथ थैंक यू करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: सच में यार, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने एंजॉय किया आनंद के साथ हैं आप। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। दोस्तों अब थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले समय आपको बता देते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:14:12 और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जो स्पेशल जानकारियां हैं वो हम आपको देते हैं। अगर बात करें आज के स्पेशल डे की, तो आज वर्ल्ड वैली डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड एक्चुअली मतलब ऐसे बहुत सारे डेज अब आजकल मनाए जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सो इस तरीके के खूब सारे डेज जो है अब मनाए जाते हैं। एवरी डे कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ ऐसे नए नए डेज होते हैं जिसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कि भैया देखिए आज ये दिवस है, आज वो दिवस है, और कल तो हम मनाएंगे ही मदर्स डे जिसकी बातें हम कर रहे हैं लगातार आपसे इसी स्टेशन पर। आज की सुबह तो मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, आप बताइए, लोग कहते हैं AI जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो AI कभी नहीं खा सकता है? भाई किसी चीज़ का तो डर ना हो, वही मैं आपसे पूछ रहा था। बड़े सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने किए हैं, ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रेन के बारे में बता रहा था कि अब ट्रेन टिकट बुक करना और भी आसान होगा और भी सुपर फास्ट होगा। जी हाँ, सो आपको बता दें ट्रेन से सफ़र करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और स्पेशली ट्रेन में ट्रैवल करने का बहुत बड़ा आपको शौक है, तो ये जो प्यारी सी खबर है वो आपके लिए है। जी हाँ, सो ट्रेन से सफर करते हैं और टिकट बुकिंग के दौरान स्लो सर्वर और लंबी वेटिंग लिस्ट या तत्काल टिकट बुक करने में परेशानी से आप जूझते हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि भैया इंडियन रेलवे अब अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को यानी कि PRS को पूरी तरह अपग्रेड करने जा रही है। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि अगस्त सन 2026 से नए हाईटेक जो टिकट है वो बुकिंग सिस्टम की शुरुआत होगी और रेलवे के मुताबिक मौजूदा सिस्टम 1986 में जो शुरू हुआ था और पिछले 4 दशक में इसमें छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से नई तकनीकी से तैयार किया जाएगा, यानी कि अब जो है आपके लिए कुछ नया और बेहतर से बेहतरीन होगा। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करने में बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस थोड़ा सा वेट करो मेरी जान, आपको सब पता लगेगा। सुन रहे हैं आप RJ आनंद को आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। बताया जा रहा है कि देश में 15 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, मतलब अभी कंफर्म नहीं है बट बढ़ सकते हैं 15 मई से। आज कितनी तारीख होगी भाजी? 9 मई हो गई आज। भाई मैं कहता हूँ आप एक कमरे के अंदर कितने दिन रह लोगे? एक दिन रह लोगे? मुझे तो लगता है कुछ लोगों का एक दिन रहना भी बड़ा भारी हो जाता है, लेकिन एक भाई साहब ने जो है ना एक ही कमरे के अंदर जो है मतलब 67 जो है उन्होंने निकाल दिए हैं। मतलब ये बड़ा अजीब सा सिनारियो निकल के आया है, पूरा माजरा भी आपको बताऊंगा तो आप भी मतलब हैरान हो जाओगे, बहुत चक्के रह जाओगे कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। हाँ मतलब एक बड़ी अजीबोगरीब खबर जो है सामने आई है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम फैन अगर आप हैं तो भैया अब इंस्टाग्राम जो है 8 मई को इन्होंने एक अपडेट दे दिया है। इंस्टाग्राम लवर्स के लिए खबर है जो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले फटाक से आपके मैसेज भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि इधर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ बहुत सारे श्रोता साथी जुड़े हैं, स्पेशली ये भूपी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं अपनी प्यारी सी मधुर मधुर आवाज़ के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागवाड़ा से। आप सुन रहे हैं पीतल नगरी का सबसे चमकता हुआ रेडियो शो बिंदास मॉर्निंग सिर्फ FM मुरादाबाद पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबकी सुबह की चाय एकदम कड़क होगी और आपका मिजाज भी उससे ज़्यादा बिंदास होगा। मुरादाबाद की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी है, ये सुबह आप सबके नाम है। दोस्तों जिंदगी में मुश्किलें तो हर मोड़ पर मिलेंगी, लेकिन उन मुश्किलों को मुरादाबादी स्टाइल में मुस्कुरा कर कहना अरे भाई हम देख लेंगे, यही तो असली बिंदास होना है। आज की बिंदास टिप्स इस प्रकार है, किस्मत के भरोसे बैठना छोड़िए, खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा और यकीन करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाने लग जाती है। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग FM मुरादाबाद पर और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज 98-378-96-896 पर। नमस्कार, राधे राधे।
0: क्या बात है भूपी जी, आपने तो मतलब इतनी एनर्जी के साथ इतना बढ़िया आपने बोला है, आनंद आ गया आनंद को। थैंक यू गाइज, आप लोग भी जागो, मोहन प्यारे जागो, कुछ तो आप भी अपनी आवाज में पहुंचाओ। अल्टीमेट था यार, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच भूपी जी, बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत ही अच्छी आपकी टिप्स थी। मैं भी एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपकी गली मोहल्ले की लाइट गायब थी तो अब जरा आपने स्विच ऑन करिए, लाइटें जो है आपकी जल जाएंगी, यानी कि लाइट वापस आ गई है। बहुत ही अच्छा गाना बरेली की बर्फी से निकाल रहा हूँ आपके रेडियो स्टेशन पे, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी से अभी आपको हम रूबरू कराएंगे, एक बहुत ही खूबसूरत योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बस हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमें एक मैसेज करोगे तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। तो अपना प्यारा सा संदेश आप पहुंचा सकते हैं आज की सुबह 9837896896, ये मेरे स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर पे आप जो है अपने दिल के हालचाल बता सकते हैं और हमारे दिल के हालचाल भी जान सकते हैं आज की सुबह।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, TPA और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: जी बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप, आपके शहर के सामुदायिक रेडियो आरजे आनंद के साथ, और ये सामुदायिक रेडियो है 89.6। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां बातें आपकी और मेरी होती हैं दिल से दिल तक वाली। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आज की सुबह अगर आप निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पूरी करने, अगर आप गाड़ियों में बैठ चुके हैं, तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सीट बेल्ट जरा आराम से लगा लीजिए ना आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, बस आराम नाल ड्राइव करो, रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा सा टर्न करो, चाना चाप कर लो पाजी, अभी गाने अच्छे हैं।

महफिल दास जदी हर्षदीप कौर की आवाज बैंड बाजा बारात से अभी आप एंजॉय कर रहे थे बहुत ही बेहतरीन वाला गाना। क्या बात है

0: क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया वाला गाना अभी आपने एंजॉय कर लिया। इस गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद पे आनंद के साथ। दोस्तों आपको बता दें, इंस्टाग्राम ने जो है वो प्राइवेट चैट करना बंद करने के लिए बोल दिया। मतलब अभी जो इंस्टाग्राम पे आप प्राइवेट चैट कर रहे थे, अब उसके बारे में एक जो है कड़क अपडेट आ गई कि भैया अब जो है इंस्टाग्राम पर प्राइवेट चैट करना बंद कर दें, क्योंकि बाद में फिर पछताना पड़ सकता है आपको। यानी कि 1-to-1 जो प्राइवेट चैट थी वो प्राइवेट चैट नहीं रहेगी आपकी, ऐसा आप कहा जा रहा है कि भैया इंस्टाग्राम पर जो है प्राइवेट चैट करना अब आप अगर बंद कर देंगे तो अच्छा, क्योंकि मीटा ने पहले ही कह दिया सावधान, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप। जी हाँ, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर प्राइवेट बातें करते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि इंस्टाग्राम पर प्राइवेट चैट करना वो खतरा है जिससे आपकी डिजिटल दुनिया में संध लग सकता है, मतलब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखो भाई आपने इंस्टाग्राम पे पहले तो चैट का ऑप्शन दे दिया है, लोगों अब जो चैट करने लगे उनको आदत लग गई, अब आप कह रहे हो कि भैया प्राइवेट चैट मत करो यार, ये ऐसे कैसे यार, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्या चल क्या रहा है ये। लेकिन फिलहाल जो लोग अब भैया इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे वो बढ़िया रहेंगे, जो नहीं करेंगे उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं कह रहा हूँ भाजी करना ही क्यों है यार, को आजकल तो व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब फिर भी मैं कह रहा हूँ भाजी मत ही करो यार, दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए चैट शूट मत करिए ज़्यादा, दिक्कत हो जाएगी, अपने काम पर फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है। अभी एक खबर ये आई है कि भैया मीट माई में ओटीटी पर हो सकती है धुरंधर 2 रिलीज। जो लोग धुरंधर 2 का वेट कर रहे हैं ओटीटी पर, तो उनके लिए है ये खबर। बताया जा रहा है कि ओटीटी पर धुरंधर 2 जो है वो आ सकती है मीट माई में, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी तो पता चलेगा यार, अगर आप धुरंधर देखे आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जरूर देखना यार। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप, हाउ यू। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज मेरे पास आया है, किनका लिखा है इन्होंने, तनुजा का मैसेज मेरे पास पहुंचा है। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू। मैं बढ़िया हूँ, आई एम गुड। और एक वॉइस नोट आया है, सो इमीडिएटली ज़रा ये भी फटाक से हम सुन लेते हैं इन्होंने क्या पहुँचा दिया है आज की सुबह। जी पाजी,
1: रेडियो के दुनिया के दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुलाम जलानी पाशा कुंदरकी से आपसे मुखातिब हूं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद के साथ। आप सभी को सलाम नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कि मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जिया कि मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जिया किसी से माफ़ी मांगी तो किसी को माफ़ किया।

देखो यार धूप तेज हो रही है तो काला चश्मा लगाकर ही निकलो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बार बार देखूं मूवी ग्राम आने वाले गाना, मतलब आई गया यार। अच्छा मैंने आपसे एक सवाल किया था यार कि लोग कहते हैं AI आ गया है, ये जॉब खा लेगा, ये खा लेगा, वो खा लेगा। मैंने कहा ऐसी कौन कौन सी चीजें जो AI कभी नहीं खा सकता है या AI कभी नहीं छीन सकता है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ आज सैटरडे की सुबह। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या मैसेज आए हैं यार आप लोगों ने, तो मतलब कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया यार, ऐसे कौन करता है भाई। ऐसे ऐसे जवाब आए ना भाई, ताबड़तोड़ वाले। मैं क्या ही बताऊं यार, मेरे को शर्म आ रही है भाई। आपको बता दूं एक बहुत ही कमाल की फिल्म है जो आज अपने 28 ईयर कंप्लीट कर रही है। बहुत ही प्यारी फिल्म थी, इसमें शाहरुख खान एंड जूही चावला थे। कमाल की केमिस्ट्री थी, कमाल का जो है क्लाइमेक्स था। मूवी बहुत ही अल्टीमेट है। अगर आपको इस मूवी के बारे में जानना है मैं बताता हूँ लोकल फॉर वोकल की एक खबर जो आपका इंतजार कर रही है इस गाने के उस पार। 9:30 आनंद के साथ हैं आप। गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
8: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
9: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
8: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
11: अरे भैया,

0: मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

शंकर, क्या सॉन्ग है यार। शंकर महादेवन, विशाल ददलानी, सुनिधि चौहान की आवाजों में बहुत ही बेहतरीन गाना एंजॉय कर लिया आपने। हाँ ओए होए, ओ बल्ले बल्ले, दोस्ताना फिल्म से। यार बहुत ही बढ़िया गाना, सच बताऊं तो बड़ा ही खूबसूरत गाना है। और ऐसे गाने मतलब जब सुनने लगते हैं ना सुबह सुबह तो दिन बन जाता है यार। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप। हर सुबह आपकी मॉर्निंग को सुपर डुपर लाउड बनाते हैं जी। जितने भी सुपरस्टार मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी का दिल की खुली बाहों से वेलकम बैक है जी। हाँ दोस्तों, मैं आपको सुबह सुबह बस आपको हंसाने और आपकी मॉर्निंग को लाउड बनाने के लिए आता हूँ। मैंने आज की सुबह ना आपसे बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा था कि आप मेरे को बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजें जो एआई नहीं ले सकता है ना। बड़े सारे लोग कहते हैं और एआई आ गया, जॉब चली जाएगी, जॉब खतरे में, ये वो, बड़ा एआई ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा। तो मैं कहा था बड़ा आप मेरे को बताओ यार, मतलब आप मेरे को बताओ यार, आपकी आपके हिसाब से क्या लगता है एआई कौन कौन सी चीजें नहीं ले सकता है। और इसमें मेरे को बड़े सारे जवाब आए मुरादाबाद, इसके क्या जवाब भेजे यार आप लोगों ने, मतलब कमाल कर दिया यार। मेरे पास मैसेज आया है, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी आपका नाम बड़ा हल्का फुल्का है, सॉरी आई मीन अच्छा नाम है। पिंकी मुझे लगती है आनंद एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हाय गुड मॉर्निंग। वाह, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हाय गुड मॉर्निंग, ये बड़ा तगड़ा ह्यूमर था। लेकिन देखो यार, एआई ना इंटरनेट खा जाएगा लेकिन एक चीज नहीं खा सकता, वो है लड़कियों के गोलगप्पे और उसका पानी। मतलब पानी कौन खाता है पिंकी जी, पहले पूरा लिख तो दो अच्छे से। पिंकी कहना चाह रही है कि देखो आनंद जी, एआई इंटरनेट खा जाएगा लेकिन फिर भी गोलगप्पे तो नहीं खा पाएगा। गोलगप्पे तो हम लड़कियां ही खा पाएंगी क्योंकि गोलगप्पे खाने का जो स्वाद है ना वो एआई को पता ही नहीं चलेगा, और पता तो सिर्फ लड़कियों को चलेगा क्योंकि वही अच्छे से खा पाती है गोलगप्पे। वाह, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल सही बोला यार, ये तो बात एकदम सही है। मतलब ये कहना चाह रही है कि एआई जो है सब कुछ खा लेगा लेकिन जो गोलगप्पे हैं वो सिर्फ इंसान खा सकता है और लड़कियां खा सकती हैं। बहुत बढ़िया, एक और मैसेज आया है, बड़ा एकदम जबरदस्त मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है। मुझे लगता है कि एआई सब कुछ समझ सकता है लेकिन माँ के हाथ की डांट और प्यार वो कभी नहीं खा सकता है और ना ही वो कभी समझ पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैसेज और आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपने आज की सुबह बिल्कुल सही सवाल किया है। मुझे लगता है कि यार एआई सब कुछ तो ले सकता है आनंद जी लेकिन हमारी जो इमोशनल अंदर की चीजें, हमारी जो इमोशन है, जो हमारी फीलिंग्स है, वो तो कभी नहीं ले सकता है। हाय गुड मॉर्निंग, मैं ब्रजेश बात कर रहा हूँ। थैंक यू ब्रजेश जी। एक मैसेज आया मेरे पास, हाय मैं लता बात कर रही हूँ, आपका नाम बड़ा प्यारा है। ये मुझे लिखती है आनंद जी, मुझे लगता है कि एआई सब कुछ खा सकता है लेकिन गर्मा गर्म जो समोसे है ना वो तो सिर्फ हम ही खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एआई सब कुछ ले लेगा लेकिन जो समोसे का टेस्ट है ना वो इंसान ही ले पाएगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है मैम, सुबह सुबह तो कमाल कर दिया, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आप लोगों का, तगड़ा बोलते हो आप लोग। एक मैसेज और पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, आप कैसे हैं, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मैम। ये मुझे लिखते हैं कि देखो एआई भले ही बहुत तेज आ जाए, सुपर फास्ट हो जाए, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एआई नहीं ले सकता, सिर्फ इंसान ले सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा आपको लगता है। इनका नाम पूनम है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है आपके। गुड मॉर्निंग, ये मुझे मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पर, इन्होंने नाम क्या लिखा है मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। डॉक्टर सुरेश जी मुझे मैसेज करते हैं प्रेमनगर से, आनंद जी भारत में एआई पाखंड नहीं खा सकता है, आत्मविश्वास भी नहीं खा सकता है क्योंकि इसका प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एआई कभी नहीं खा सकता है। मयंक बीतल नगरी से मेरे साथ जय श्री राम का मैसेज पहुंचाते हैं। एक मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सना नाजिया सर, ये लिखते हैं एआई को भू मतलब एआई ये लिखते हैं बहू को नहीं कम कर सकता है जो इंसान करते हैं, अच्छा भूख नहीं कम कर सकता है जो इंसान, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, करता है। जैसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुझे लगता है कि एआई नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंसान ही करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुख दुख में काम आती है, वो एआई नहीं आ सकता है। बिल्कुल आपने ये तो बात सही कही है आपने, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई नहीं कर सकता है। और इसी को लेकर बहुत सारे लोग हमेशा टेंस हो जाते हैं कि यार पता नहीं एआई आ जाएगा तो हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी, ये वो। वेल सना जी, नाजिया जी, आपने जो बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया है इसके लिए थैंक यू सो मच, मैं समझ गया आपके जज्बात, आपकी फीलिंग, आई एग्री विद यू 100%। एक मैसेज आया है, हेलो गुड मॉर्निंग, जो काम हम इंसान कर सकते हैं वो एआई कहां कर लेगा। आनंद जी एआई से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये भी आपने सही बोला। एक मैसेज आया है, एआई आंसर दे सकता है लेकिन शादी में 20 गुलाब जामुन नहीं खा सकता, वो तो सिर्फ मैं ही खा पाऊंगी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रेरणा। आहा, प्रेरणा जी आपके मैसेज से तो मुझे प्रेरणा मिल रही है कि भैया प्रेरणा जी गुलाब जामुन बहुत ज्यादा खाती है।
मुझे ऐसा लग रहा है. वेल थैंक यू वेरी मच गाइज, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सो हैप्पी. एक मैसेज और आ गया, गुड मॉर्निंग. इंसानों की नौकरी खा सकता है AI, लेकिन घर पर बची हुई जो ठंडी रोटी है ना वो हम इंसान ही खाएंगे, वो AI नहीं खा सकता. ओ हो हो, मतलब मैडम जी आपका जो दुख है ना वो समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और बहुत ही बेहतरीन गाना, ये भी AI नहीं गा सकता है ना, ये सिर्फ श्रेया घोषाल गा सकती है, क्योंकि इतनी मधुर आवाज सिर्फ श्रेया मैम की ही हो सकती है जी. राउडी राठौर से एक नंबर गाना, साथ में कुमार शानू जी देंगे साथ. 9:45 हो रहे हैं, एक कड़क अपडेट आपका इंतजार कर रही है और एक छोटा सा कड़क क्वेश्चन. फटाफट से क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ. ये गाने का जो पार्ट है वो बेसिकली कौन से गाने का है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एक गाना प्ले कर रहा हूँ, इसको जरा सुनिए और मुझे बताइए जो गाना है वो कौन सा गाना है. बीच का पार्ट प्ले कर रहा हूँ गाने का.

कौन सा गाना है ये आपने मेरे को मैसेज करके बताना है 9837896896। आज यही फिल्म है जो 28 ईयर कंप्लीट करी, यानी कि 28 साल पूरे हो गए इस फिल्म को रिलीज हुए। बहुत ही कमाल की फिल्म थी, शाहरुख खान एंड जूही चावला के ऊपर पिक्चराइजेशन। ये गाना कौन सा गाना है?

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
5: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद, कॉल 9548088900।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद, कॉल 7060022430।

0: गुड मॉर्निंग, हेलो हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, मेरी आजी आरजी आनंद के साथ। मैंने कहा जी गुड गुड वाली मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजते ही मेरे अंदर जाग जाती है ये विद्या बालन।
1: हेलो, सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है?
0: अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली।
2: गुड मॉर्निंग,
3: हाँ जी, देखो यार बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं आनंद के साथ। आज की सुबह लास्ट मौका है, आप इस गाने को पकड़िए। कौन सा गाना है ये?

इस गाने का नाम बताना है, लास्ट मौका है आपके पास। सैटरडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप, अपनी ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बॉस एक और अच्छा गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, और इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक फटाफट से लोकल अपडेट दे देता हूँ मुरादाबाद से जुड़ी, वो ये है कि भैया देखिए, IRCTC की तरफ से टूरिज्म द्वारा भारत गौरव टूर

स्ट्रीम के माध्यम से 7 ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत की यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहली यात्रा 12 जून 2026 से शुरू होगी, जिसमें आप महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर समेत 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। दूसरी यात्रा 29 जून से तिरुपति बालाजी एंड इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर और आप कन्याकुमारी तक जो है जा सकेंगे। और ये संचालित होगी ट्रेन मुरादाबाद समेत कई स्टेशनों से यात्रा कर सकेंगे आप, मतलब जो है। और आपको बता दें कि पैकेज में ट्रेन के लिए भोजन और साथ ही साथ इसमें जो है एक इन्होंने ऑफर भी निकाला है कि पहले आओ पहले पाओ। तो अगर आप मुरादाबाद से इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो ये कड़क अपडेट हमने आपको बता दी है। जी हाँ बॉस, एक बार फिर से बता देता हूँ, IRCTC टूरिज्म द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से 7 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये एक छोटी सी खड़क अपडेट जो हमने आप तक बताई, अभी लौट कर आते हैं एक कड़क लकी कॉलर।

0: टशन फिल्म से अभी आप एंजॉय कर रहे हैं डांस पे चांस। दिल डांस भैया, दिल डांस मार रहा है आपका, मेरा भी दिल डांस कर रहा है। सुखविंदर सिंह की आवाज, उदित नारायण साथ दे रहे थे, साथ में सुनिधि चौहान, विशाल शिखर का म्यूजिक। विशाल साहब ने लिखा इस गाने को।
1: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे, हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे।
0: डांस तो रीना भी मार रही है मेरे साथ बैठ के, व्हाइट व्हाइट फेस लेके स्नैपचैट बना रही है। चलो जी, फिलहाल इसमें बेबो का लुक देखा था आपने, साथ में अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान ने क्या मतलब गेटअप लिया था। अगर आपने गाना नहीं देखा तो आज की सुबह मैं आपको इमेजिनेशन करा रहा हूँ, गोल्डन बाल, ब्लैक शर्ट एंड बेबो, मतलब डिफरेंट था यार। प्लीज डू वॉच, डेफिनेटली आप इसको देखो एक बारी, प्लीज यू हैव टू चेक आउट, ये गाना क्या है यार। चलो अभी एक लकी कॉलर जुड़ी है मेरे साथ आज की सुबह। डांस से पहले उनसे बात कर लेते हैं। आज की मॉर्निंग मैंने आपसे पूछा था ये कौन से फिल्म का कौन सा गाना है, आज 28 ईयर कंप्लीट करी है मूवी, बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी। यही बताने के लिए कॉलर जुड़ी है मेरे साथ। हाय गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी सना, कैसे हैं आप, पहले अपने बारे में बताएं।
2: क्या सर, मैं एकदम बढ़िया,
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सना जी। अभी जो ये बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, ये कौन सा गाना था जरा बताएं, कौन सी फिल्म का गाना था?
2: तो ये डुप्लीकेट मूवी का गाना है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। और गाने के बोल क्या है?
2: मेरे महबूब, मेरे सनम, शुक्रिया
0: मेहरबानी। अरे कंग्रेचुलेशन सना जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वैसे नूरी जी ने भी मुझे कॉल किया कि सही जवाब बताया जयंतीपुर से, एंड सना जी आप दोनों के लिए जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन। सना जी और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
2: सब बढ़िया चल रहा है,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, सब एकदम बढ़िया और मस्त ही चलना चाहिए और जिंदगी में सब कुछ झकास ही रहना चाहिए, है ना। रेडियो सुनती है आप, कैसा लगता है आपको?
2: सर रेडियो बहुत अच्छा लगता,
0: मतलब मजा आता है,
2: बहुत मजा आता।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बस मजा ही आना चाहिए, हमारी भी यही जो है कोशिश होती है कि आप लोग रेडियो सुनो तो आपको मजा आए।
2: बिंदास मॉर्निंग शो वगैरह बहुत मजा आता, तो ये सब झिलमिलाता।
0: अच्छा, मेरे को पता नहीं था। अच्छा आपको क्या लगता है सना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि लोगों को टेंशन है AI आ गया है, जॉब छीन लेगा, ये वो, ऐसी कौन सी चीजें जो AI नहीं ले सकता है, तुम्हें क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू?
2: AI हमें चाय बना के नहीं दे सकता।
0: नहीं, मैं आपको पक्का चाय बना के दे सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। अच्छा और क्या चीज नहीं ले सकता AI, या फिर क्या नहीं कर सकता है?
2: AI सिर्फ लिख सकता है, लेकिन वो अपनी
0: गलतियों
2: को भी सुधार भी नहीं सकता सर।
0: Got it, I agree with you 100%। मतलब काफी दिमाग लगा रही है देख लो सना जी, इनको पता है
2: सही गलत का फैसला कर लेते हैं AI, मतलब न्याय दिलाते हैं AI, न्याय नहीं दिला सकता।
0: हाँ, मुझे लगता है कि हम इस पे
2: न्याय नहीं ले सकता।
0: हाँ बताओ बताओ क्या चीज, जल्दी इमीडिएटली क्विकली बताओ।
2: डॉक्टर्स की जगह नहीं ले सकता, जज की जगह नहीं ले सकता, मतलब जो हम काम करते हैं इंसान,
0: वो मुझे लगता है कि AI मेरी जगह भी नहीं ले सकता यार,
2: आई थिंक। नहीं सर, नहीं ले सकता वो, मैं नहीं बोल सकता जी सर, माइक से नहीं बोल सकता वो।
0: नहीं आजकल AI आवाज तो, AI से तो बहुत सारी चीजें हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत सुपर फास्ट है, लेकिन वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो जज्बात, वो सारी चीजें ना, वो शायद नहीं दे पाएगा AI,
2: कभी भी नहीं ले पाएगा, कितनी भी आगे पहुंच जाए।
0: True, got it. Thank you, Sana. Thank you so much for showing your love. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, अपना ख्याल रखो and congratulations once again. Okay, thank you. Bye, bye.

0: चलो भैया लाल चुनरिया ओढ़ के निकलो या पीली चुनरिया, बिकॉज धूप बहुत तेज है, टेम्परेचर 29 डिग्री पहुंच गया है बॉस। तो ऐसे में पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेटेड प्लीज, एंड कोशिश करिए अपना जरा ख्याल ज्यादा रखें। आप गर्मी है और काला चश्मा भी लगा के निकले। आनंद के साथ है अभी आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल जाने का टाइम, निकलेंगे नहीं तो फिर वापस आएंगे कैसे। कल संडे है, कल मेरी छुट्टी है, यानी ये तो कल ही पता लगेगा। वेल, कल मदर्स डे है, सभी मॉम्स को वेरी हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस, स्पेशली मेरी माँ को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली प्लीज डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। डोंट फॉरगेट, वहाँ भी अच्छी चीजें आपके लिए करते रहते हैं। एंड ऑफिशियल आईडी फॉलो करें एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से, वहाँ पर भी बहुत सारी गेम्स, कॉन्टेंट एंड बहुत सारा मेनी मोर फन, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। विकी सागर जी मेरे साथ जुड़े थे। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी। ललिता कश्यप जी ने एकदम सही जवाब दिया था आज की सुबह। दर्पण भैया गुड मॉर्निंग, आप भी जुड़े एकदम सही जवाब के साथ, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। गुड मॉर्निंग सर, हाय माय नेम इज सुहानी, आई एम फ्रॉम शिवपुरी। गुड मॉर्निंग, राइट आंसर देने के लिए सुहानी। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग जी, मेरे पास मैसेज पहुंच रहा था नाजिया का, इन्होंने सही जवाब दिया है। रिजवान खान साहब जुड़ गए हैं ग्राम बिजना से सही जवाब के साथ। यशपाल बिंदल यमुनानगर हरियाणा से जुड़े हैं। मेरे पास दुर्गेश जी का सही जवाब आया था। एक वॉइस नोट मेरे पास पहुंच गया है आज की मॉर्निंग, सो बिना किसी देरी के इमीडिएटली मुझे लगता है कि इनकी आवाज को भी सुन लेना चाहिए। जी सर, टेल मी। हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहे हैं जी?
1: आनंद सर, जो आपने सवाल किया है वो ये वाला गाना है, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम।
0: तालियां आपके लिए बॉस, पीछे से वसु की आवाज भी डाल दी आपने, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। ये लक्ष्मी देवी सूर्य नगर से जुड़ी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। रामपुर से शर्मा जी मुझे लिखती हैं, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम गुड। गुड मॉर्निंग, ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो, जब भी खोलो तुम अपनी पलके, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। वाह वाह वाह वाह, कमाल कर दिया जी आज की सुबह है। रोहित कुमार हनुमान मूर्ति से इतनी प्यारी लाइन पहुंचा रहे हैं, अरे आप ही पहुंचा सकते हो भाई साहब। रिहाना जी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग भूपी शर्मा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। चलो अभी के लिए लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, कल सुबह मैं मिलूंगा, यानी आई डोंट नो, वैसे तो कल संडे मतलब फंडे वाला डे। अमरोहा से मैसेज पहुंच रहा था, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नेहा है। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? शुक्रिया मेहरबानी करम, दिस इज राइट आंसर, थैंक यू सो मच नेहा जुड़ने के लिए मेरे साथ। हाय गुड मॉर्निंग, नेहा स्वाति भी जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, 10:06, नेक्स्ट कंपनी एंजॉय करो रीना के साथ, मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा था शबीना जी का, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो डिलीट कर दिया है। आई एम रियली सॉरी शबीना जी, मैं देख नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट सी, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं आपका शामिल करूंगा, अभी के लिए मैं लेता हूँ जाने की इजाजत। रहमत नगर गली नंबर 1 से शबीना जी हमारे साथ जुड़ती है, बड़ी प्यारी लिसनर है। चलो बाय गाइस, कल मिलते हैं, अभी के लिए हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। बाय।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है आज रीना के साथ मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 10:14 हो चुके हैं और आज रीना आप सभी के साथ 2 घंटे के लिए कनेक्ट हो गई है जी। तो आपने क्या करना है, फटाफट अपना मैसेज हमारे साथ शेयर करना है, जो भी आप महसूस करना चाह रहे गाइस, क्योंकि सुबह का टाइम है और दिन भी शनिवार, और शनिवार वाले दिन तो वैसे ही भगवान शनिदेव की कृपा इतनी बरसती है ना कि भाई क्या ही कह सकते हैं। और वैसे देखिए शाम के टाइम ना मंदिर जाना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जब आप मैसेज करते हैं तो और भी सुकून मिलता है। सो आप अपना मैसेज भेजिए फटाफट, हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल एक मेरी तरफ से आप सभी के लिए गाना है बहुत ही प्यारा।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया है आपने। हम तेरे दिल में आ गए, आय हाय क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया अर्जुनीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 10:21 हो चुके हैं, गुड वाली मॉर्निंग है जी अर्जुनीना के साथ। और अब देखिए, जैसे मई यानी कि आज है 9 मई, और आज के अगर वेदर की बात करूँ तो मुरादाबाद का वेदर है यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो गर्मी है वो अब बढ़ने वाली है। सो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब स्कूलों की भी छुट्टियां बहुत जल्द पड़ने वाली है। सो अभी से प्लानिंग चल रहा होगा कि हाँ यहाँ जाएंगे घूमने के लिए, नानी के घर जाएंगे, बहुत सी जगह के हमारे दिमाग में ना प्लानिंग बनती रहती है कि कहाँ हमने घूमने जाना है, जैसे छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए, अब मदर्स डे कल है, तो मदर्स डे के लिए देखिए कल संडे है और संडे को रीना छुट्टी पर रहती है। तो आज यानी कि ये क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, और जिनका क्वेश्चन यानी कि जो हम पूछने वाले हैं और जो आंसर आप सभी का आने वाला है धमाकेदार वाला, सो गाना भी आपको ऐसे मैं सुनाने वाली हूँ धमाकेदार वाली। तो आज का मेरा देखिए आप सभी से कड़क सवाल है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी के लिए है, तो आपने बस हमें महसूस करके बताना है कि अगर आपको अपनी मम्मी को एक शब्द में धन्यवाद कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। आप हमें महसूस करके बताइए, नंबर है 9837896896। क्योंकि देखिए मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि निस्वार्थ प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उनके लिए चाहे आप उनको गुस्से में भी कभी बोल दो या फिर वो आपको कुछ काम बता रहे हैं तब भी आप नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आपसे बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा करते हैं और फिर आपकी केयर करने लग जाते हैं, लेकिन कोई और दूसरा आपकी केयर नहीं करेगा, वो तो बस यही कहेगा कि इसमें फुल ऑफ एटीट्यूड है तो इसे बोलना ही बेकार है। लेकिन जो एक प्यार जो हमारे साथ हमेशा रहती है, हमेशा दुआ रहती है, वो है हमारी माँ। तो आप अपनी माँ को धन्यवाद एक शब्द में अगर कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, हमें मैसेज करके बताइए जी, मैसेज करिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं आपके मैसेज की तरफ। गुड मॉर्निंग रीना जी, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। अयूब जी रामपुर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। प्यार, प्यार। और अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना, रीना जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान। और देखिए आज मैंने आप सभी से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मम्मा के लिए ना थैंक यू तो बनता है गाइस, तो आप एक शब्द में अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो आप कैसे कहेंगे, फटाफट मैसेज करके बताइए। और मदर्स डे है कल, क्योंकि ज़िंदगी में ना हम ऐसे बहुत चीज़ें बहुत सी है जो गलतियां कर जाते हैं जिसका रिग्रेट हमें हमेशा रहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उसको कैसे रिलेट करेंगे, कैसे सॉरी बोलेंगे, क्योंकि हम अक्सर मम्मी से सॉरी बहुत रेयरली बोलते हैं, क्यों हमें पता होता है कि मम्मा है मान जाएंगे, लेकिन हमें अपनी गलती का तो रियलाइज है ना, तो इसीलिए बताइए। और फिलहाल अगला गाना भी बहुत प्यारा है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
0: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: बजना।
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हैं आप, चूड़िया बजाओ के बजाओ कंगना। सच में कुछ गाने ना बड़े ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, जो सुकून देते हैं। सो अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में, एक गुड वाली मॉर्निंग है जी। और समय की बात करूँ तो 10:34 हो चुके हैं। और देखिए, जो गाड़ी बाइक चलाते हैं और स्कूटी चलाते हैं, उनके जेब पर ना थोड़ा सा बर्डन पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, बताती हूँ। 15 मई से यानी कि ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जेब के जो पॉकेट है ना उस पर दबाव दबकर पड़ने वाला है, तो ध्यान रखिएगा गाइस। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है ना कि हम पहले के टाइम में भी ना किसी के पास इतनी गाड़ियाँ बाइक नहीं होती थी, फिर भी वो लंबे दूरी के सफ़र करके जाते थे। और उससे क्या है ना कि चलते थे तो ब्लड सर्कुलेट यानी कि सही रहता था, और उससे बीमार भी हम कम पड़ते थे। लेकिन अब के टाइम में अगर बात करूँ तो भाई, 2 कदम भी अगर चलना हो ना तब भी स्कूटी बाइक लेकर जाएंगे, पैदल तो जाने का नाम ही नहीं लेंगे। पैदल चले गए तो ये कहते यार बेइज्जती हो जाएगी मेरी, सब बोलेंगे कि मेरे पास बाइक स्कूटी नहीं है। तो मतलब ये है, अब का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाला है कि हमारे पास ये है वो है, दिखाएंगे नहीं तो मतलब कोई हमें कैसे कुछ बोलेगा। तो मुझे लगता है कि दिखावे को छोड़िए, क्योंकि इस दिखावे के चक्कर में ना बहुत से बीमारियां हमारे अंदर घर कर लेती है, और फिर क्या, हम परेशान रहते हैं हर चीज। मतलब अब ना बात करूँ तो मेडिसिन के बिना कोई इंसान चल ही नहीं पा रहा है, जिसे देखो भाई दवाई ले रहे हम दवाई ले रहे। तो कुछ चीज़ें अपने ज़िंदगी के रूटीन है उसको हमें चेंज करना चाहिए, और चेंज तभी हो पाएगा जब आप काफ़ी देर तक काफ़ी दूर तक जब पैदल चलेंगे तब जाके आप ठीक हो पाएंगे। सो चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार मैंने आप सभी से यही पूछा है कि कल है मदर्स डे, तो कल रीना का तो ऑफ रहता है, तो आज मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा है कि आपने ऐसी कोई गलती की है जिसे आप मम्मा को सॉरी बोलना चाहते हो। कौन सी गलती आपने ऐसी की है जो आपको रिग्रेट है उस चीज़ का, जिसके लिए आप मम्मा को सॉरी बोलना चाहते हैं, तो आपने फटाफट मैसेज करके बताना था हमें। सो अंशिका का मैसेज आता है, और ये MDA से कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि मैम मुझे मेरी शादी हो गई है, और शादी से पहले ऐसा था कि जब मैं मम्मा से बोलती थी कि मुझे गिलास पानी चाहिए या फिर खाना चाहिए तो मैं बेड पे ही बैठी रहती थी, मम्मा मुझे ला के दे देती थी। और कभी कभी मम्मी बोलती भी थी कि बेटा खुद से भी अपना काम करना चाहिए, तुम खड़े हो जाके खुद ले लो, मम्मा थक रही है इस टाइम। तो मैं फिर भी मम्मा को बोलती थी यार मम्मा प्लीज़ मुझे चाहिए। तो मम्मी कितनी भी थकी रहती थी ना, तो कभी ये मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया उन्होंने कि मैं थकी हुई हूँ या परेशान हूँ, बल्कि हमेशा मेरे लिए जो भी चीज़ मांगती वो ला कर दे देती थी। सो आज मैं जब मेरी शादी हो गई है तब मेरे को मेरी मम्मी बहुत याद आती हैं, कि जब मैं खुद सारा काम करती हूँ खुद के लिए, मतलब मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं रहता कि मैं कब खाना खाऊं कब ना खाऊं, लेकिन मेरी मम्मी की बहुत याद आती है मुझे। और मैं सच बताऊं मैं बहुत नर्वस हूँ इस टाइम, कि काश उस टाइम मैंने मम्मी को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम दे दिया होता, क्यों आज भी तो मैं घर का सारा काम करती हूँ ना, और शायद मैं उस टाइम थोड़ा सा मम्मी को आराम दे देती तो मुझे मेरी आत्मा को मतलब तृप्ति मिलती, शांति मिलती। अभी भी है बट लगता है कि जैसे मैंने बचपन में ना बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं जिसके लिए मैं कितना भी सॉरी बोलूँ ना उतना मेरे लिए कम है। क्या बात है जी अंशिका जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है, और सही बात है। एक बेटियाँ मम्मा की ना हेल्प करती हैं काम में, तो ज़रूर करना चाहिए। और देखिए हम अगले घर भी जाकर सारा काम करते हैं, तो अपने घर क्यों नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना, तो करना चाहिए। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज किन का आता है, रीना जी जय श्री राम, गौरव टेलर नबी नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। क्या हाल है रीना जी, बहुत अच्छे हैं जी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हो आप, जानकारियां भी बहुत अच्छी लेकर आती हैं आप, थैंक यू सो मच जी। और इनका कहना है कि हम रेडियो सुनते रहते हैं, रेडियो गुनगुनाते रहे, रेडियो बजाते रहे, क्या बात है जी। और ये बहुत प्यारी लाइनें भी लिखते हैं, जुबान और दिमाग ज़्यादा चलने से रिश्तों की रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल जी, इसीलिए कहते हैं जो भी आप बोले सोच समझ कर बोले, तोल नाप कर बोले कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इंसान आपको एक से दो बार माफ़ करता है, तीसरी बार उसको भी पता चल जाएगा कि यार ये तो हमेशा यही गलती करता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब इसकी हैबिट हो गई है तो फिर वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा। और अगले मैसेज की बात करूँ तो कश्मीर से हमारे साथ मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि गुड मॉर्निंग, और इनका कहना है कि आरजे जी आप कैसे हो, बहुत अच्छे हैं जी, एंड आपकी आवाज़ और आपका जो प्रोग्राम है सुपर डुपर होता है और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल हम गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जब रीना बोलना शुरू करती तो बंद नहीं होती गाइस, फिलहाल आप मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837 8968 9।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: Japanese tire expert for over 100 years, Yokohama, ab Moradabad mein. Visit कीजिए Yokohama Club Network, Chawla Tires और Pi Premium Tires की wide range, alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network, Chawla Tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

हाँ जी, अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 10:49 हो चुके हैं और आइए शो में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, मुझसे मोहब्बत का इजहार, यानी कि गाने होते हैं बड़े प्यारे हम। और फ्रॉम मूवी से आपने गाना सुना है हम है राही प्यार के। ये मूवी यानी कि 1993 में रिलीज हुई थी, जिसमें आमिर खान और जूही चावला का बहुत प्यारा रोल है इसमें। सो देखिए, आजकल का जो टाइम है ना, डिजिटल हो गया है और इस डिजिटल दुनिया में ना थोड़ा सा हमें संभल कर रहना है। अब डिजिटल दुनिया में हमें संभल कर क्यों रहना है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, बच्चे से लेकर बड़े से बूढ़े तक हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है ना, और फोटोज वगैरह भी हम

पहले क्या होता था कि अगर हम दो के बीच में वार्तालाप चल रही हैं, बातें कर रहे हैं, तो इस थर्ड पर्सन को नहीं पता होता था, लेकिन अब आपकी चैट मेटा पूरा पढ़ सकता है कि क्या आप बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात कर रहे हैं। तो अब इंस्टाग्राम सेफ नहीं है, इसीलिए जो भी आप कदम उठा रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेटा ने पहले ही बोल दिया कि अब इंस्टाग्राम प्रेवेसी नहीं रही है, प्रेवेसी हटा दिया गया है, यानी कि जो आपके सुरक्षा कवच है उसको खारिज कर दिया गया है। तो जो भी आप बात करें, थोड़ा सोच समझ के हम तो यही कहेंगे बस। और देखिए, मुझे लगता है कि गंदी बातें या वैसी बातें करने से क्या ही फायदा है, किसी से भी आप बात करें, अच्छे से बात करें, बस इनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत से चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं और हम सेफ के चक्कर में खुद फंस जाते हैं। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पर। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है, ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी, रहीस दूला अंसारी कनेक्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग, हैव ए लवली डे, थैंक यू सो मच सर, और आपका भी दिन आज का बहुत ही प्यारा जाए और प्यारा रहे और हमेशा ही रहे, मैं तो यही कहती हूँ। रीना मैम आप कैसी हो? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? और हम आपका शो सुन रहे हैं, आपको ब्रॉडकास्टिंग आपकी लाजवाब है, थैंक यू सो मच जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे अगला मैसेज किन का आता है। अमरोहा से हमारे साथ नेहा कनेक्ट होती है। नमस्ते मेरी प्यारी रीना मैम, क्या हाल है आपके? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? और इनका कहना है कि हमारा रेडियो काफ़ी टाइम से ना खराब हो गया था, तो आपका शो है ना सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम डेली सुनेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारा शो अब डेली सुनेंगी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, अमरीन कनेक्ट होती है लाइन पर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग जी, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आजाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद सारिक अली जी कनेक्ट होते हैं और इनके परम मित्र हैं इरशाद अंसारी जी, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करें तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि पूजा जी कनेक्ट होती हैं बुद्धे बिहार मुरादाबाद से। और इनका कहना है कि मैम मैं अपनी मम्मी को सॉरी बोलना चाहती हूँ, और मेरी मम्मी मेरे पास ही हैं, और जैसे आपने अंशिका दी की जो उन्होंने मैसेज किया था कि शादी से पहले वो कुछ काम नहीं करती थी, अपनी मम्मा से जो बोलती थी मम्मा ला के दे देती थी, तो मैं भी ऐसी हूँ। और मम्मा मेरे को कुछ भी बोलती, मैं बोलती हूँ यार क्या मम्मा अभी मुझसे काम करा रही हो आप, अभी मैं तो थक गई हूँ। लेकिन जैसे आपने उनकी उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि अब मुझे भी ना अपने काम करना चाहिए, नहीं कि मम्मी को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ अपनी मम्मी से, और सॉरी भी बोलती हूँ कि आज के बाद वो जो भी मुझे काम बताएंगे मैं डेफिनेटली उस काम को करूंगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छी बात है कि मम्मी की हेल्प हमें करनी चाहिए। और सॉरी आपने कोई, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा है आज कि आप ने अपनी लाइफ में कोई तो ऐसा गलती करा होगा कि जिसको आप सॉरी बोलना चाहते हैं, अगर आप सॉरी बोलना चाहते हो एक शब्द में आप कैसे सॉरी बोल सकते हैं, उसके लिए आपको मैसेज करना है, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 11:02 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और देखिए, इस बढ़ती गर्मी में ना, एक तो इंसान के अंदर ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे को गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, रात को सोने से पहले एक सूखा अंजीर प्लस 2 बादाम खाकर आपने सो जाना है। उससे मूड आपका जो बैलेंस रहेगा और दिमाग भी शांत। और उससे बड़ी और उससे अच्छी बात, यानी कि आपको मॉर्निंग के समय, यानी कि सुबह सुबह 5 बजे आप उठते हैं, तो अनुलोम विलोम कपालभाति करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं तो आपका मन शांत रहने लग जाता है, क्योंकि जब सुबह सुबह ब्लड सर्कुलेट पूरे बॉडी में जब घूमता है ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत होने लगता है। अगर आपने ये रेमेडी अभी तक नहीं किया है तो करके देखिएगा, आपको खुद आप फील करेंगे उसी दिन से कि आपको कितना रिलैक्स फील होता है, मन शांत रहता है। आपको लगेगा कि भाई, मतलब सुकून, इस इतनी सुकून मिलेगी ना आपको कि आप, मतलब जो काम आप नहीं करना चाहते, जिस काम से आपको नफरत, वो भी आप हंसते खेलते करेंगे बहुत प्यार से। तो इसीलिए सुबह के टाइम में अपने रूटीन बनाइए कि अनुलोम विलोम चाहे कुछ भी हो जाए, और कपाल भाती तो हमें करना ही करना है। चाहे अपने लिए 5 मिनट निकाले, आधा घंटा निकाले, लेकिन निकालिए जरूर, क्योंकि अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हम अक्सर हर किसी के लिए समय निकालते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए, खुद को रखना आगे भूल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को आगे रखिए, फिर कोई और काम करिए, क्योंकि जब आप खुद सही रहेंगे तभी आप खुद किसी के लिए खड़े भी रहेंगे और काम भी करेंगे। सो चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, यानी कि आपने अलका याग्निक जी की आवाज में और सोनू निगम जी की आवाज में ये गाना एंजॉय किया है, जो कि बहुत ही लाजवाब है। और शादियों में ये गाना तो बजता ही जी, डेफिनेटली प्ले होता है। सो हमारे पास अगले मैसेज की बात करें तो गुड मॉर्निंग जिला रामपुर ग्राम खेरा टांडा से मोहम्मद कामिल जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि ये शायरी लिख कर भेजते हैं। कहते हैं, होते अगर पास तो क्या ही शरारत करते, अगर होते पास तो क्या ही शरारत करते, लेकर तुम्हें बाहों में मोहब्बत करते, आए हाय, देखते तेरी आंखों में नींद के ख्वाब, अपनी खोई हुई नींद को शिकायत करते, हाय हाय, क्या बात है जी। बहुत ही प्यारा, और इतना प्यारा है कि दिल घायल ही हो गया जी। अगले मैसेज की बात करें तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि जनकपुरी सहारनपुर से कनेक्ट होते हैं जोन रोजी पलवली जी, और इनका कहना है कि गुड मॉर्निंग। चलिए जी, फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर अपनी मम्मी को आपको सॉरी बोलने का मौका मिले तो एक शब्द में आप कैसे सॉरी बोलेंगे, सो हमारे पास बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। और शुरुआत करते हैं राधे राधे रीना जी। राधे राधे सर, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, और आप कैसी हैं? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अपनी माँ के प्रति गहरा आभार व्यक्त करने के लिए सबसे सशक्त शब्द है कृतज्ञ। यह शब्द केवल एक औपचारिक धन्यवाद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि माँ, मैं आपके द्वारा किए गए त्याग, प्रेम और ममता को अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ, और मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। क्या बात है जी, ये हमारे पास बहुत प्यारा मैसेज आता है भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबाड़ा से। और सच में सही कहा आपने सर, कि जो माँ त्याग देती है, प्रेम करती है, ममता हमारे ऊपर लुटाती है, उसको हम कुछ भी कर ले, लेकिन उसका कर्ज कभी नहीं हटा सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी माँ की केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो कुछ कह रही है तो वो हमारे भले के लिए कहती हैं, हमें उसको मानना, स्वीकार करना
बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि क्योंकि माँ बाप का प्यार, डांट, फटकार हमें कामयाब करके ही छोड़ता है, और वो हमारे कामयाबी के लिए ही हमें डांटती हैं। वो ये नहीं चाहती कि जिस सिचुएशन या जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, कल को उनके बच्चे भी वहीं खड़े रहें, बल्कि वो अपने बच्चों को अपने से ऊपर देखना चाहती हैं। तो इसीलिए हमेशा माँ बाप का सम्मान करिए, उनके रिस्पेक्ट करिए, जो भी काम बताते हैं आपको उसको दिल से करिए। कभी भी आपको ये नहीं जताना है कि नहीं यार मेरी मम्मी डांटती रहती है, वो हमारे भलाई के लिए ही डांटती है जी। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग रीना मैम, सना एंड नाजिया हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, थैंक यू सो मच जी। चलिए गाइस फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, गुड वाली मॉर्निंग है जी, आरजे रीना के साथ। समय की बात करूं तो 11:17 हो चुके हैं। और देखिए रीना को ना, मतलब इवनिंग की बड़ी याद रहती है। सच बताओ, जब देखो इवनिंग इवनिंग है, मतलब सुबह होती नहीं, इसको शाम कराने की बड़ी पहली पड़ जाती है। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, अगले मैसेज की तरफ कि किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। लेकिन साथ साथ देखिए, आम का सीजन है और आम हर किसी को पसंद होता है, और कहते हैं फलों का राजा आम है। लेकिन आजकल राजा के अंदर भी मिलावट आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा के अंदर कैसे मिलावट आ सकती है। हाँ ते मेरी जान, राजा के अंदर भी मिलावट आ रही है। आजकल कोई भी फ्रूट्स आप देख लीजिए, बिना मिलावट केमिकल के है ही नहीं। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि जो आपको आम पीला दिख रहा है ऊपर से, तो आप सोच रहे होंगे ना कि ये अच्छा पीला है, तो इसका मतलब ये पूरा पक चुका है। लेकिन ऐसा गलत है। वो जो सिर्फ पीला दिखता है वो पका हुआ नहीं होता है। इनफैक्ट इन दोनों का पहचानने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि आप जब भी आम खरीद के ला रहे हैं घर में, तो एक बाल्टी में पानी भरिए और उस बाल्टी में उस आम को डाल दीजिए। जो भी आप बाहर से आम लेकर आते हैं उसको पानी में जरूर डालें, क्योंकि एक तो उसकी जो गर्मी होती है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि कौन सा आम पका हुआ है और कौन अभी आधा अधूरा पका हुआ है। जो कि पका हुआ आम होगा वो नीचे बाल्टी के अंदर वो चिपक कर यानी कि बैठ जाएगा, और जो अभी पका नहीं होगा, जो केमिकल वाला होगा, वो ऊपर ही तैरने लगेगा। वो बोलेगा कि मैं तैर रहा हूँ, मुझे डूबना नहीं आता, मैं डूबने से बचूंगा। तो ये दो चीजें हैं जो आपको पके हुए आम में और फर्क पता चल जाएगा। आम खरीद कर ला रहे तो घर पे जरूर उसको पानी के बाल्टी में पानी भरिए, उसके अंदर डालिए। जो पके हुए आम होंगे नीचे चले जाएंगे और जो पके नहीं होंगे ऊपर तैरने लग जाते। तो ये दो फैक्ट है आम के पहचानने के। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं मैसेज की तरफ। हमारे पास किनका मैसेज आता है? हेलो रीना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करें तो अगला मैसेज आता है हमारे पास,

सना हमारे साथ कनेक्ट होती है। गुड मॉर्निंग दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आप बताइए कैसी हैं। अगले मैसेज की बात करें तो अगला मैसेज आता है, हाय दी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। दरक्षा फातिमा हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और इनके साथ इनकी प्यारी प्यारी दोस्त भी कनेक्ट होती हैं। रुकैया फातिमा, लाइबा काजमी, अफरोज फातिमा और रीना मैम। ओके जी।

चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है। हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, हाउ आर यू मैम। आई एम गुड सर, आई एम ऑल्सो गुड, हमेशा मैं खुश ठीक रहती हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उमेश कुमार प्रजापति लोधीपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज सो क्यूट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना भी बहुत प्यारा है, ओल्ड इज गोल्ड, आशा भोसले जी की आवाज में, किशोर कुमार जी की आवाज में।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद.
1: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
2: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
1: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412-111-111.
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन.
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर. 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद.
5: कॉल 8826213131.
6: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद.

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, तेरा मेरा प्यार है अमर। और सच में मुझे लगता है कि जब कोई भी इंसान किसी से अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो मुझे लगता है उनकी दोस्ती हो चाहे प्यार हो, अमर हो जानी चाहिए। और उस प्यार में ना बस किसी की नज़र ना लगे। कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी चीज़ हो उसका उसको प्राइवेसी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़र लगने में वक्त नहीं लगता है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6, यानी कि आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो। एंजॉय कर रहे हैं आप आरजे रीना के साथ। समय की बात करूँ तो 11:32 हो चुकी हैं। और आइए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। सिसवा दोराहा से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं नईमुल अकरम जी, और इनके साथ है सादिक भाई। और ये ओके जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि मैम आज मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा है। ओके जी, बड़ा मौसम सुहाना है, अच्छी बात है, सुहाना ही रहना चाहिए। और नाश्ता कर लो जी, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे। ओके, समोसे जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक आरजेरीना रहेगी आपकी रेडियो पर बोलती। चलिए फिलहाल अगले अगले मैसेज की तरफ बात करते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किनका आता है? मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग रीना जी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं सर, सैटरडे में मॉर्निंग मसाला शो आपको सुनते हैं, अच्छा लगता है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कही सर आपने, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा काम में बिजी हो गए हैं आजकल, क्योंकि आप समझ गए सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करें तो बड़ा प्यारा ही आंसर आया है हमारे पास। इनका कहना है कि ये हमारे पास रूपाली जी कनेक्ट होती हैं, और ये लाइन पार से हैं। और इनका कहना है कि मैम मैं अपनी मम्मा को सॉरी बोलना चाह रही हूँ, इसलिए कि एक टाइम एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो मेरी मम्मा ने मना करा था मेरे को कि अगर आप हॉस्टल में पढ़ रही हो तो बिना मतलब जब भी आप बाहर जाओ तो मम्मा से आप एक बार कॉल करके बता देना, पूछना, और बिना बिना पूछे आप बाहर मत जाना। तो इन्होंने अपने लाइफ में वो गलती करी थी, और उस गलती का पछतावा इनको अभी भी है। और ये कह रही है, इनका कहना है कि ये बात मैंने आज तक रिवील नहीं करी थी, लेकिन जैसे आपने आज क्वेश्चन पूछा है, कल मदर्स डे है तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी मदर्स डे, और हमारी जो प्यारी वुमनिया है उनको भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ माँ की भी, माँ को भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इनका कहना है कि मैं उस चीज़ को अभी भी मतलब वो दिन मेरे लिए बहुत खराब था, मतलब मैं उसको याद भी करती हूँ ना तो मैं मतलब समझ नहीं पाती हूँ कि मैंने ये गलती क्यों करी है। तो इसीलिए सभी से कहना चाहूँगी कि घर वाले आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनकी बातें सुने, और ये भी जरूरी है कि आप अपनी भी बातें

है, लेकिन जब मम्मी पापा जो उस चीज के लिए बोलते हैं वो हमेशा सच होता है, तो उनकी बातों का भी आप जरूर अमल रखें। बिल्कुल जी, सही बात कही आपने, और मैं अपनी मम्मा से सॉरी बोलना चाह रही हूँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप कल मदर्स डे हैं, तो उनके लिए आप कुछ जो मतलब कल मदर्स डे पे ना अपने घर पर एक थीम रखिए, वो थीम ये होना चाहिए कि मम्मी के पसंद के खाने बनने चाहिए बस, और कि मम्मी क्या मम्मी को क्या पसंद है आप उनसे पूछे। वैसे मम्मी वैसे बताती नहीं है, बड़ी चालाक होती है मम्मियाँ। वो बोलती हैं कि जो आपको पसंद है वो भी मुझे, वही मैं भी खा लूंगी, वो भी मुझे पसंद है। तो आपने क्या करना है, बातों बातों में उनसे निकलवाना है कि अच्छा चलो बताओ, आप जब छोटे थे तो ना अब नानी से क्या बोलते थे कि मेरा क्या फेवरेट चीज है उनसे बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से करके बातें निकाल निकाल के आपको पता चली जाएगा कि सबसे प्यारा फेवरेट चीज मम्मी के लिए क्या डिश है। तो कल यानी कि आपको अपनी मम्मा के लिए बनाना है और इंजॉय करना है। कल है मदर्स डे, और मुझे लगता है कि मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता है, हमारे लिए हर रोज हर दिन मदर्स डे है। क्योंकि जब मदर नहीं होती घर में भी ना, तो समझो मन नहीं लगता है। जब भी हम बाहर से घर जाते हैं तो बस मम्मी की एक झलक दिख जानी चाहिए, अदरवाइज मम्मी की एक झलक नहीं दिखती है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे मम्मी गई तो गई कहाँ, मम्मी को बुलाओ। क्योंकि लड़ना भी झगड़ना भी मम्मी से है, प्यार भी मम्मी से ही है। तो मम्मी के लिए सिर्फ एक दिन नहीं होता है, मम्मी से ही दिन होते हैं हमारे। तो चलिए गाइस, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत प्यारा गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, लता मंगेशकर जी की आवाज में, किशोर कुमार जी की आवाज में।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
1: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
0: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
4: कॉल 8826213131
5: बसंती इनके सामने मत नाचना
6: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 11:49 हो चुके हैं और शो में आगे बढ़ते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज है 9 मई और 9 मई को मनाया जाता है महाराणा प्रताप जयंती। आज यह दिन याद करते हैं वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप को। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया था। हरी घाटी का युद्ध उनकी वीरता और अदम्य साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि चाहे हालत कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने आत्मसम्मान, साहस और सच्चाई के साथ

लगता है कि दो बातें, झूठ बोलना, इधर उधर बोलना ही सच है कि सच बोलो और सच बोलो सुखी रहो, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। सो चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना मैम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, हमारे साथ ये कनेक्ट होते हैं। रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी, इरशाद अंसारी, सारी कली, मेराज अंसारी, जो कि इनके परम मित्र हैं, और इनका कहना है कि आपके द्वारा पेश किया हो गया प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच जी, और जो आपका रिक्वेस्ट है हम जरूर पूरा करेंगे सर। बस डेफिनेटली आप हमारे आज रेडियो के साथ कनेक्ट रहिए, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आलोक जी, जो कि ये बुद्धि बिहार से हैं, और इनका कहना है कि कल मदर्स डे है मैम, तो आपको एडवांस में हैप्पी मदर्स डे, और आप भी अपनी मम्मा के लिए शायद कुछ बनाने वाली होंगी। सर मैं बनाती ज़रूर, लेकिन मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ, बट मैं हूँ आप सभी के शहर में, अपने शहर मुरादाबाद में, तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर विश करूँगी। और मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यारा पसंद है, यानी कि बहुत ही सिंपल खीर, उनको बस खीर बना कर दे दो, उसी में वो खुश रहती है, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। और इनका कहना है कि कल मैं अपनी मम्मा के लिए ना बहुत कुछ तैयारियां कर रखी है मैंने, और अपनी मेरी सिस्टर नहीं है एक भी, और मैं अकेला ही हूँ, तो मैं खुद ही हैंडल टेक ओवर करने वाला हूँ कल। और सच में कल मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत प्यारी हैं। हाँ जी, सबकी मम्मा बहुत प्यारी होती हैं, सब बहुत अच्छे से, सभी मम्मा हैं जो माताएं हैं, केयर करती हैं अपने बच्चों के लिए, हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही करती हैं। सो आप सभी को एडवांस में हैप्पी मदर्स डे, और अभी के लिए मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त, क्योंकि हम आपको मिलेंगे दोपहर 3 बजे हेलो फरमाइश शो में, जहाँ पर करेंगे ढेर सारी बातें, ढेर सारी मस्ती, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उनको हम पूरा करेंगे। और अभी के लिए साइनिंग ऑफ लेते हैं, यहाँ से जाने की इजाज़त। देखिए गर्मी में अपना बस ख्याल रखना है कि तली भुनी चीज़ें आपने नहीं खानी है, उसको अवॉइड करना है, और जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब आप पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेट रहते हैं और आप अच्छे से काम भी कर पाते हैं। चलिए फिलहाल बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया था, माँ के लिए ही गाना था ये, कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। सच में रिश्ता जो मम्मी पापा के साथ होता है ना, वो अनमोल होता है, सबसे अलग होता है। और यही रीत है कि माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा आगे रहती है। कहते हैं ना, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है इस दुनिया में। चलिए जी फिलहाल गाना एंजॉय करिए और मिलते हैं दोपहर में।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। सज्जन रे झूठ ना बोलो, साधना सरगम जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज में आपने बहुत प्यारा गाना एंजॉय किया है। और मुझे फाइनली एक बार और लौटकर आप सभी के साथ कनेक्ट होना पड़ा, क्योंकि बहुत प्यारा जो मैसेज आ गया है, सो चलिए इस मैसेज को शामिल करते हैं। मुकेश चौहान जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है, झुके नहीं जो मुगलों के आगे, जिसने अपना मान बचाया था मातृभूमि की रक्षा के खातिर, जिसने जंगल में वक्त बिताया था। महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम सर, आज महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश चौहान जी कटघर रोड आरुष ग्रीन कॉलोनी से कनेक्ट होते हैं हमारे साथ मुरादाबाद से सर। और इसी के साथ अब समय का जो यानी कि कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, और अभी के लिए बाय बाय जी।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
8: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
7: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
8: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: और हाय रबा, वो भी हो गया। अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना, फिर
1: जो दिल के रिश्ते होते। आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।

0: मौसम।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40

0: वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
1: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
2: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
1: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-111111.

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाए। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है। लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे की आबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध

0: कारणों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
1: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
2: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
1: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
2: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
2: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
1: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं, जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
0: और खासकर बेटियों के मामले में हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
1: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्पूर्ण हो।
2: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
0: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और यह

0: सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
1: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
0: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गाँव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षा करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी

0: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
1: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
2: और मेरी तरफ से मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। 7, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रखें। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
1: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवा

0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना? तो देखिये, ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना, तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
5: आनंद, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
4: हो। अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
5: बिल्कुल,
4: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
5: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए।
4: बिल्कुल, तो आज सोच बदलो का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त, हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
5: गुनगुनाते रहिए।
4: श्रोताओं,
6: आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बता यार।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती
0: हूँ, सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है। रीना, जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करूंगी तो पैसा
1: पैसे कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: ये आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है, उससे पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है, या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहिणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 MHz आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी, और इसी तरह के प्रोग्राम्स हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो समुदाय है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है, है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करेंगे,
0: कम करें आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं, और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा है गीत और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिये दोस्तों, याद रखिये सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बच कर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराए। क्यों रीना?
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों, आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा Nevada.
6: Japanese tire expert for over 100 years, Yokohama, ab Moradabad mein. Visit कीजिए Yokohama Club Network. Chawla tires और Pi premium tires की wide range, alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
7: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
6: Visit Yokohama Club Network, Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-111111.

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

अंजी आर्जरीना के साथ अब कनेक्ट है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे। जी आज के समय में ना शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ तक बेटियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बेटों के लिए है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह सिर्फ अपने जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देती है। पढ़ी लिखी बेटियाँ सही फैसले लेती है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए और उन्हें आगे जरूर भेजे, उनका साथ दे। और आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ।

आपके साथ आपकी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं, जिस बेटी को हम पढ़ने से मना करते थे, वही बेटी आज पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। वही बेटियां आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पुलिस ऑफिसर बन रही हैं। समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। आज कई परिवार बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके सपनों को उड़ान देते हैं। यही बदलाव हमें आगे भी जारी रखना है और अपनी बेटियों को डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करना है। उन्हें बोलना है कि तुम ही हो देश की नारी और तुम ही हो देश की बेटी और हमें तुम पर गर्व है। तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक परिवार अपनी बेटी का साथ देता है ना, तो उसकी देखा देख हर किसी की सोच बदलती है और हर किसी के दिमाग में यही आता है कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और हमारी बेटी भी आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। तो श्रोताओं, बने रहिए यूं ही आरजे रीना के साथ और भी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, जब बेटियां पढ़ती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो अपने देश का नाम रोशन करती है। तो उनमें से अगर बेटियों की बात करूं तो पीवी सिंधु, कल्पना चावला, साक्षी मलिक, ये हमारी बेटियां देश की शान है, जिन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती है। बस एक ही बात चाहिए कि आप उनके साथ रहें। तो जब बेटियां आगे बढ़ती है ना, तो हमें भी देखकर गर्व होता है कि अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सोच बदल रही है। तो इसी सोच के साथ आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें बोझ ना समझे और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहे। जी अगला गाना भी बहुत ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आती हूँ आरजे रीना के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: हां जी, की हाल चाल है आर्जरीना के साथ? एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जरीना के साथ। और अब आर्जरीना लेती है आप सभी से जाने की इजाजत। सो बस एक ही बात कहना चाहेंगे आप सभी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां हमारे समाज की ताकत है, उन्हें मौका दीजिए और देखिए वो कैसे दुनिया बदल देती है। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है जी। और सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ।
1: हाय दया नन्ना जी, आपका दूल्हा तो

0: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, टीपीए और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत। ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूँ तो 3:15 हो चुके हैं। हेलो फरमाइश शो में आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है जी, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपने अपना फोन उठाना है और हमें कॉल करना है। नंबर है 9837896896 पर आप कॉल करिए और आर्जरीना के साथ कनेक्ट होकर आप जो भी गाना सुनना चाहते हैं डेफिनेटली सुन सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून रेना जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आपका शोक गए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोजाना सुनते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रयास करती है आप।
0: थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत अच्छी जानकारी का प्रोग्राम है ये, काफी टाइम से।
0: हाँ जी
1: भी
0: हाँ जी हाँ जी, अब डेली ऐसी तरीके का एपिसोड आता रहेगा आप सभी के लिए।
1: हमारा ये मुरादाबाद का एफएम बढ़िया प्रोग्राम देता रहे और जानकारी मिलती रहेगी सभी सुनने वालों को, भाई बहनों को, घरों में।
0: हाँ जी हाँ जी सर, तो बताइए सर कैसे हैं आप? और
1: सब बढ़िया है, और हमारे आपके यहाँ एफएम पे सब लोग कैसे हैं?
0: सब बहुत बढ़िया है सर, एकदम मस्त हैं। बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है जमाई राजा फिल्म का।
0: अच्छा, जमाई राजा फिल्म का कौन सा गाने सर?
1: और प्यार हुआ है मुझे और तुझे।
0: ओके सर,
1: और हमारे साथ में है डॉक्टर सैयद तारिक अली एस एस खान से।
0: ओके ओके सर,
1: हुसैन हमसानी है और गानी सभावी रामदोपे हाजी रफ्तार साहब है और इज्जत अरवासी सत्यमा बंसारी है रही चोला।
0: ओके जी,
1: हाँ ये सब लोग सुनना चाहते हैं।
0: चलिए सर, सभी के साथ फिर आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके जी ओके। चलिए तो श्रोताओं, गाना एंजॉय करते हैं, गाना एंजॉय करते हैं। प्यार हुआ मुझे, बहुत ही प्यारा ये जो गाना है, एकदम मस्त वाला है। सो इस गाने को एंजॉय करते रहिए और आप भी कॉल करते रहिए।

0: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: हाँ जी, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूँ तो 3:24 हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, प्यार हुआ है मुझे, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, जमाई राजा मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। और माधुरी दीक्षित की बात ही क्या करें भाई, जिनके इनके बारे में जितनी भी आप तारीफ करें उतना ही कम है, बहुत कम है। उई उई उई उई। चलिए श्रोताओं, अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। फरमाइश शो है तो आप कॉल करते रहिए, हमें नंबर है 9837896896 पर कॉल करिए और गाना आराम से आप सुन सकते हैं। बात वही है ना, गाना वही जो आप सुनना चाहें। सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
6: हेलो।
5: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
6: जी हेलो फरमाइश, कहते हैं कि कौन हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, क्योंकि मैं आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो रीना जी, आपकी शान में कबूल हो मोहब्बत भरा नमस्कार हमारा।
5: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
6: मैं जिला रामपुर ग्राम खेड़ा से मुहर्रम बात कर रहा हूँ आपसे।
5: बताइए सर, कैसे हैं आप, फैमिली में सब कैसे हैं?
6: एकदम अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। और मैं जानना चाहूंगा आपकी फैमिली में और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
5: हाँ जी सर, हमारे फैमिली में और स्टूडियो में भी सब बहुत बढ़िया, एकदम मस्त हैं।
6: लेकिन मैम, सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हम तो यही कामना करते हैं, आप हमें सब खुश रहें।
5: हाँ जी हाँ जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
6: देखिए मैम, जब हेलो फरमाइश वाले ग्रहण में रामपुर तो कॉल शामिल हो रही है तो मूवी का नाम है साजन जहर और उसमें एक सॉन्ग है नजर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, कुछ टाइप के बोले।
5: ठीक है जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
6: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड से मोहम्मद कामिल, मोहम्मद तालिब परवेज। तो जितने भी मुरादाबाद सुन रहे हैं लाइव, सभी के लिए डेडिकेट रहेगा सॉन्ग।
5: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके जी ओके। तो श्रोताओं, गाना एंजॉय करते रहिए। फिलहाल टेम्परेचर की बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मौसम थोड़ा सा गर्माहट वाली है। सो अपना ध्यान रखिए, पानी की बोतल अपने साथ रखिए और आर्जेरीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires or Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
1: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
0: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412-111-111.
2: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखून एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। नजर जिधर जाए वही जिया जाए, बहुत ही प्यारा गाने हैं। और सच में पुराने जो गाने होते हैं ना, बड़े ही लाजवाब होते हैं। आरजे रीना के साथ कनेक्ट है आप, और आप सुन रहे हैं अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करें तो 3:32 हो चुके हैं, और आप देखिए, या फिर चाहे आप घर पर हैं या फिर ट्रैफिक में हैं, आप कहीं भी हैं, आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम गाना किसी को डेडिकेट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कष्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। कष्ट ये है कि हमें कॉल करना पड़ेगा, नंबर है 9837896896। सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर,
1: ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए कैसे हैं आप? जी बताइए,

0: कौन सा गाना सुनेंगे सर आप? हेलो
1: हेलो, फिल्म का नाम है फिर वही दिल आया हूँ।
0: हाँ जी, और गाने की बोल?
1: सॉन्ग है अजी के बुला मोहतरमा, इस आपके अंदाज का क्या कहना।
0: ठीक है सर, लग रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं।
1: जी हाँ
0: हाँ, क्योंकि सांसें भरी हुई है।
1: जी जी
0: ठीक है सर,
1: काम मिला हुआ था मैं।
0: हाँ हाँ,
1: हमारे दोस्त,
0: हाँ ले लीजिए नाम।
1: दोस्त है करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शहीदत सारी गली, और करूला मुरादाबाद से महराज अंसारी।
0: हाँ जी,
1: दामो मस्जिद भगवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान।
0: ठीक है जी, ठीक है,
1: ये सब सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना हम सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है, ओके
0: ओके सर, ध्यान रखिए अपना।
1: जी जी,
0: चलिए गाना एंजॉय करते हैं। लेकिन गाना एंजॉय करने से पहले अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पानी जो जितना आप पियेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए और साथ ही साथ आप हमारा रेडियो एंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है मोहम्मद रफी जी की आवाज में। और आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: आज ना एक मैं बहुत प्यारी लाइन पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें देखा कि हम ना कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत सोचने लग जाते हैं कि हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जितना डिप्रेस होते हैं, जितना आप सोचते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो रही है और आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और भागते भागते एक दिन ऐसा है क्या कि आप पूरी तरह थक जाएंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हमें उस चीज़ को उसी सिचुएशन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक आम की गुठली से आप सीखिए, उसको आम खाने के बाद हम उस गुठली को फेंक देते हैं, जहां मर्जी वहां फेंक देते हैं, लेकिन वो वहीं पर एक नया पौधा, एक नया जीवन शुरू करता है और फिर हर इंसान को छाया देता है, फल देता है, और बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो हमें ऐसा ही होना चाहिए कि बस जो चीजें नहीं हो रही है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसके बाद रीस्टार्ट करिए, क्योंकि आप उस चीज को बार बार सोचते रहेंगे, करते रहेंगे तो नहीं होएगा, आप परेशान ही होंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते अपने शो में, अगले कॉलर से बात करते हैं कि कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि समय की बात करें तो 3:40 हो चुके हैं। हेलो हेलो
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताइए। मैम
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: मैं दोनों तरन्नुम बोल रही हूँ।
0: तरन्नुम
1: जी मैम,
0: जी, तरन्नुम जी, बताइए, फैमिली में सब बढ़िया है?
1: हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारे इधर तरफ बताओ।
0: बहुत बढ़िया, एकदम मस्त
1: और
0: जी।
1: मैम आगे कुछ ना करने,
0: क्या कह रहे हो?
1: यही ना करना, आज मन की रोल रही हूँ। नहीं
0: मैम समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हैं आप।
1: मैं कह रही हूँ वही ना करना, आज बोल रही हूँ। मैम
0: मैम आप गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: बोला हूँ गाने में तुझे लाया लाली करारा।
0: अच्छा चलिए, शादी वादी में जाने का तैयारियां चल रही है क्या जी?
1: मैम
0: तभी तो लाल सरारा वाला गाना एंजॉय कर रही हैं आप। ठीक है मैम, हम मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: मैम पूरा सुना देना,
0: क्या,
1: पूरा सुना देना। चलो
0: अरे आपकी इजाजत हो तो मैं दोबारा चला दूँ इसको?
1: दोबारा सुना दिए काम को।
0: चलो ठीक है जी, ठीक है, चलिए ये गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। और आपने क्या करना है जी, हमें कॉल करते रहना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेरीना के साथ फरमाइश शो में, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात की जाए तो 3:48 हो चुके हैं। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी बोलिए।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
1: दीदी मैं आप बताइए आप कैसी?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम काशीपुर से नया बात कर रही हूँ।
0: नेहा जी,
1: जी
0: बताइए जी कौन से गाने सुनेंगी आप? वैसे करती क्या हैं आप?
1: दीदी जरी का काम करती
0: हैं। अच्छा, जरी का काम करती हैं आप।
1: जी
0: ठीक है जी, बताइए कौन से गाने सुनेंगी आप?
1: गाना सुनवा दीजिए, कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं।
0: अच्छा जी, अब बेहद मोहब्बत करती है, मैं बता देती हूँ आपको।
1: जी कुछ नाम बोलना चाहती हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी बोल लीजिए।
1: अच्छा, हमारे साथ में शबनम जी, फातिमा भी और भतीजी मरियम, साथ में आप और।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी बाय।
0: जी बाय। चलिए गाना एंजॉय करते हैं। कभी ये ना पूछेगा कितना मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत के समंदर में आप डूब जाएंगे।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। कभी ये ना पूछना कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। क्योंकि आप इस रेडियो को इतना प्यार देते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप सभी कनेक्ट होते हैं, आप सभी के प्यारे मैसेज और जो कॉल होते हैं, शिद्दत से जो रेडियो आप सुनते हैं ना, दिल से धन्यवाद आप सभी के लिए। सो अगर समय की बात करूँ, हेलो मुरादाबाद शो में आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट हैं। समय हो चुका है 3:56, और आइए अपने शो में आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में हैं बहन जी, आप बताओ कैसे हो जी?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या नाम है आपका?
1: बहन जी मेरा नाम है जगदीश राय गर्ग, पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से मैं बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: बहन जी आज मशहूर गजल गायक तलत महमूद जी की पुण्यतिथि है, और उन्हीं का गाया हुआ गीत है जी फिल्म जहां आरा से।
0: जी
1: तो गीत के बोल मैं तरन्नम में बताता हूँ जी।
0: जी बताइए, तरन्नम में बताइए आप।
1: तेरी आंख के आंसू पी जाऊं,

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूब, बहुत खूबसूरत आपने गाया है। और बताइए, आपके उधर का वेदर कैसा है सर?
1: मौसम यहाँ का बहुत खुशगवार है बहन जी, आनंद देता है। और जिधर मर्जी देखो, चाय के बागान है जहाँ पालमपुर में, और घुमावदार सड़कें, और ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो,
0: आय हाय, क्या बात है।
1: और ठंडी ठंडी हवाएं, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं, कोई धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं, बिल्कुल स्वस्थ जीवन, स्वच्छ
0: शुद्ध हवा
1: वातावरण, शुद्ध हवा,
0: जी। तो सर हम भी आ रहे आपके घर।
1: बिल्कुल जी। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे, उस समय का इंतजार करेंगे, वो कब भाग्यवान दिन आएगा।
0: चलिए सर, आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: हाँ ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: ओके ओके ओके जी।
1: ओके
0: चलिए जी, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत इन्होंने गाया अपनी प्यारी सी मधुर आवाज में। कहते हैं ना, जो भी काम आप, जिस काम में माहिर हो वो आप काम करो,

ये मत सोचो कि आपको दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ कहती है और आपका काम है काम करना। दुनिया को बोलने दीजिए, आप जिस काम को करना चाह रहे हो उस काम को करिए और यूं ही अपने जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। और साथ ही साथ ढेर सारे गाने FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर इंजॉय करते रहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यारे जो हमारे RJs हैं, आप सभी के लिए शो लेकर आते हैं, अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, सो आप उनको अपना प्यार रिझाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद आपको हम ये गाना एंजॉय कराएंगे। सो

0: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
1: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
0: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
2: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग जेड 19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
1: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
4: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
3: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
4: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करें तो 4:09 हो चुकी हैं और आपका जो फरमाइश शो यानी कि बस 1 घंटा और है, इसमें आपने क्या करना है जी। कल संडे है, आपको भी पता है कि संडे को फरमाइश शो नहीं आता है। तो आज का दिन यानी कि शनिवार, तो शनिवार वाले दिन इस शो का लुफ्त उठाइए और फटाफट हमें कॉल करिए। नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। शायरी सुनाना चाहते हैं आप वो भी सुना सकते हैं। और किसी से थोड़ी बहुत नोक झोक हो गई हो और आप आपको पता है कि ये फेवरेट वाला गाना उनका है, तो आप वो भी उनके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते जी, कैसी हो आप?
1: दीदी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: दीदी कहते हैं खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, हवा बनकर आपकी सांसों में समा जाएंगे, धड़कन बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे, जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए, दूर रहकर भी आपके स्टूडियो में नजर आएंगे।
0: अरे अरे क्या बात, बहुत ही प्यारा शायरी अंदाज आपका, शायराना अंदाज। अपना जरा नाम भी बता दीजिए इनको।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खनिया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ।
0: ओके जी, शबनम जी क्या करती हैं आप?
1: मैं दीदी ब्यूटिशियन हूँ और पार्लर में काम करती रहती हूँ, आपके कार्यक्रम सुनते रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता
0: है। कहाँ है आपका ये पार्लर, मुझे भी आना है।
1: जी है, मेरा पार्लर खंडिया में है, जिला रामपुर।
0: अच्छा रामपुर
1: जी,
0: आना। बहुत दूर हो आप तो।
1: बहुत दूर नहीं है दीदी, जब आओगी तो आपको पास ही लगेगा।
0: ठीक है जी, आएंगे हम कभी। ठीक है
1: जी,
0: बाल को ठीक करवाने आएंगे अपने।
1: दीदी जरूर आना
0: जी। तो आप डिस्काउंट उस्काउंट दे देंगे मुझे या नहीं देंगे?
1: क्यों नहीं देंगे दीदी, बस आप आ जाना, बस किराया लगा के आ जाना, सब कुछ फ्री में।
0: अरे अरे नहीं नहीं नहीं नहीं जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने इतना बोला उतना मेरे लिए बहुत बहुत, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए कुछ कहने के लिए।
1: दीदी अभी हम अमरोहा आए थे, अमरोहा के हॉस्पिटल में अभी 3 दिन रह के गए दीदी आपके पास ही थे।
0: अच्छा अच्छा, क्या तबीयत ठीक नहीं है?
1: जी दीदी तबीयत ठीक नहीं थी, बस समझ लो दीदी मारी गए थे, जी गए आपकी दुआ।
0: अरे अरे अरे अरे, बस ऊपर वाले की दुआ बनी रहनी चाहिए जी।
1: जी दीदी
0: हाँ जी, तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास, इसी का गाना सुनवा दीजिए। और दीदी दो नाम है।
0: हाँ जी हाँ जी, ले लीजिए।
1: जैसे संग में है समा परवीन, रुकैया निखत, और संग में आप मैं शबनम अब्बासी।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
1: जी दीदी, थैंक यू।
0: ठीक है, अपना ध्यान रखिए।
1: जरूर रखेंगे दीदी, आप भी अपना ध्यान रखना, हमसे बात करते रहना।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो गाना एंजॉय करते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है कि हम तुम कितने दूर कितने पास पास। और सच बताओ, कुछ गाने बड़े प्यारे होते हैं जो हमारे जिंदगी से हमें रिलेट करते हैं। और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है फरमाइशों में, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 4:18 हो चुके हैं, और आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो रेमा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश। अरे वो मैं आपसे जो बात कर रहा था,
0: हाँ हाँ,
1: उस जमाने में नया दौर बनना जमना, और ये तो लीडर ये पांच से बिगड़ जो मुगले आते जो वो एकदम से एक सप्ताह और ढाम दस में एक से एक साथ रिलीज हुई थी। गंगा बैठी है
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? अपना नाम बता दीजिए श्रोता। बहुत
1: नाम ओम प्रकाश, रेलवे कॉलोनी मरौड़वा से बोल रहा।
0: अच्छा जी,
1: अब तो 80 की उम्र में पुराने गाने सुनने की मुझे शौक है। अब घर में अकेले पड़ गया, अब शनिवार दिन छुट्टी रहती, जॉब रिटायरमेंट तो हो गई 20 साल, अब जॉब करता हूँ प्राइवेट में, बिहारवा ऑफिस में, फिर भी आठ दिन फिर जाता है।
0: अरे सर, पुराने गानों की बात ही अलग है, ओल्ड इज गोल्ड इसीलिए तो कहते हैं।
1: और ये नया दौर, अरे एक गाना और था वो तो मुझे याद आता कभी उसको, अल हिलाल हमें तो लूट लिया मिलते हुस्न वालों ने, करके ने वालों ने,
0: गोरे गालों ने।
1: ये गाना मिलता ही नहीं है।
0: मिल जाएगा जी। अभी बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ये अभी तो आपको बताया, तो भूल गया।
0: चली चली रे पतंग,
1: भाभी का चली चली रे पतंग।
0: हाँ, 1957 में ये मूवी रिलीज हुई थी, बहुत ही।
1: अरे सर मैडम जी, उस जमाने में तो बात ही अलग थी। एलियन पिक्चर की, एलियन प्रोडक्शन पिक्चर थी, बहुत बढ़िया पिक्चर थी।
0: हाँ हाँ,
1: एलियन, अब किसी को नाम भी याद नहीं होगा, मैं उस समय 11-12 का था।
0: और हमारा तो पता ही नहीं था सर।
1: कोई बात नहीं है, अब तो पता चल गया ना।
0: हाँ,
1: बच्चों से थोड़ा वार्तालाप हो जाती, कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आज मैं ये फाइनली गाना सुनने वाली हूँ, बहुत पुराना गाना।
1: सारे श्रोताएं सुनेंगे, आज भी सुनेंगे। अच्छा मैडम जी, राज भाषा कहाँ चले गए?
0: अरे राज भैया राज करने चले गए हैं।
1: अरे फिर आपके जो हरियाणा तौर के बाद गाने में मजा ही नहीं आता। संघवास में अखिल भाई भाई आते हैं, वो रामपुर से आते हैं, वो उत्तम मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: आपके लिए हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा हो सर। ठीक है
1: ठीक है ठीक है,
0: ओके जी। चलिए सर, मैं आपको गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: थैंक यू
0: जी, वेलकम। चलिए पुराने गाने एंजॉय करते हैं। चली चली रे पतंग।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ फरमाइश शो में, और समय की बात करें तो 4:26 हो चुके हैं, और बहुत ही प्यारा भाभी एल्बम मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है चली चली रे पतंग, लता मंगेशकर जी की आवाज में और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गाना एंजॉय किया आपने। सच बताऊ पुराने गाने ना होते ही बड़े लाजवाब है, पुराने गाने हो चाहे पुराने मूवीज हो, बहुत खूबसूरत। और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि वो पुराने जमाने के ऐसे मूवी होते थे कि आप फैमिली वालों के साथ देख बैठ कर देखो बड़ा मजा आता है। और जो पुरानी चीजें आप देखते हो अब के टाइम में तो हमें नहीं पता, लेकिन जब आप पुरानी से मूवी देखोगे तो आपको हर एक चीज मूवी के अंदर बैलगाड़ी हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। सो चलिए इसी के साथ अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर
1: जी
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार जी, बढ़िया हैं, मैं आप सुनवा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? जिला मुरादाबाद गोरखपुर, फिलहाल गोरखपुर से बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान।
0: अच्छा जी, रिजवान जी बताइए क्या काम करते हैं आप?
1: जी अपना यही काम है, चिनाई का आशियाने बनाना।
0: अच्छा, चिनाई का काम है, जो घर मकान बनाते हैं?
1: जी मकान बनाते हैं।
0: ओके ओके, सलाम है सर आपको, इतनी धूप में भी घर बनाते हैं आप, बिल्डिंग ही खड़ी करते हैं,
1: क्या जा रहा है, करना तो पड़ेगा जब काम ही ऐसा सीखे हैं तो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना सुनना चाहते हैं साजन मूवी का गाना है, मैं तू शायर है मैं तेरी शायरी।
0: तू शायर है मैं तेरी शायरी। ठीक है सर, मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी हाँ है, शमसुल हक है, अफसर भाई है, अनस भाई है, एक मुस्तकीम भाई है।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
1: ठीक है ठीक,
0: ओके जी ओके, चलिए जी गाना एंजॉय करते हैं। तू

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: जी गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ फरमाइश शो में, और समय की बात करूं तो 4:36 हो चुके हैं। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो फरमाइश मैडम।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया है मैडम।
0: चलो अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: अभी बताया ना सर, काम बात कर रहे हैं, रहने वाले हैं गोविंदपुर खुर्द जिला मुरादाबाद।
0: अच्छा जी, अच्छा जी। क्या काम करते हैं आप?
1: काम करते हैं जुड़ाइया का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, ठेका है।
0: अच्छा, ठेके का काम करते हैं आप?
1: हमारे पापा का ठेका चल रहा है।
0: अच्छा, तो आप उनकी हेल्प करवाते हैं?
1: हाँ उनकी हेल्प ही करवाते हैं।
0: चलो बहुत अच्छी बात है सर। बताइए
1: अफसर नाम है हमारे पापा का।
0: क्या है?
1: अफसर
0: अफसर। ठीक है
1: हमारे
0: जी,
1: घर पर शादी है अभी 30 तारीख को है शादी अभी।
0: तो मुझे बुलाएंगे आप?
1: ना आप आना
0: ठीक है जी, आप
1: शादी
0: एड्रेस
1: में।
0: एड्रेस बता देना, मैं आ
1: एड्रेस
0: जाऊंगी।
1: सरस गेड़े वाले रास्ते पे ये गोविंदपुर पड़ता है।
0: ठीक है जी, मैं आ जाऊंगी 20 तारीख को। ठीक है, हाँ ठीक है जी। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: तुम्ही से चुरा लो,
0: तुम ही मेरे
1: तुम ही
0: माथे
1: को
0: की
1: चुरा लो ना, वाला गाना नहीं सुनने चाह रहे, वो मना कर रहे हैं यार दोस्त। हाँ
0: देखते हैं सर, प्लेलिस्ट में है नहीं। कौन सा गाना है तो बताइए।
1: तुम ही को चुरा लो। हाँ
0: तुम ही को चुरा लूँ। ठीक है जी, आपको हम गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ओके
0: ओके जी, चलिए जी, इनका गाना एंजॉय करते हैं। तुम ही को तुम ही से चुरा लूँ। और आप गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल करिए, नंबर है 9837896896 पर गाना सुन सकते हैं आप।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ फरमाइशो में। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यानी कि 4:45 और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और कल संडे है। तो देखिए मौका, अच्छी बात है कि आपको मौका मिल सके आज कनेक्ट होने के लिए। तो बिना किसी देरी के अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
6: हेलो,
5: हाँ जी सर।
6: हेलो, फरमाइश।
5: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
6: गुड आफ्टरनून जी। और रीना राय जी, क्या टाइम हो रही है इस टाइम?
5: रीना राय जी, सर इस टाइम टाइम हो रहा है यानी कि 4:56।
6: तो जी आज हम तलत महमूद की याद में,
5: हाँ
6: जी सुनेंगे, आप सुनवा देना अपनी मर्जी से।
5: ठीक है जी, मैं सुनवा दूंगी, लेकिन हमारे श्रोता आपका नाम तो जानना चाह रहे, वो भी तो बताइए।
6: मोहल्ला पंजूसराय, बरकत वाली मस्जिद, संभल से छोटे अंसारी।
5: अच्छा जी, छोटे अंसारी जी बात कर रहे हैं आप। वही चंपिंग चंपिंग।
6: बहुत खुशी हो रही है मेरी कॉल लग गई तो।
5: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है कि आपकी आपको खुशी हो रही है कॉल लग गई तो।
6: बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी किसी टाइम पे तो, कॉल लग जा कॉल लग जा।
5: सर अभी तक आपने कितने पापड़ बेल लिए हैं?
6: अरे कोई 8-9 जने तो खा ही लेंगे, इतने पापड़ बेल लिए।
5: अच्छा, 8-9 जने खा लेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतने अपने पापड़ बेल लिए तो।
6: हाँ, और ये लोग जो कहते हैं ना मैडम मैडम मैडम, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैडम जी कहमे या मैम जी कहमे।
5: सर किसी को हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, बस हमें अपना सोचना चाहिए।
6: हाँ, और जी जितने भी इस टाइम पे कार्यक्रम सुनना है उनको भी सलाम है और आपको भी सलाम है जी।
5: ठीक है जी, आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है।
6: हाँ, तो अभी तो कुछ नाम, मतलब एक दो नाम लेना चाह रही था मैं।
5: हाँ ले लीजिए,
6: गर्मी इतनी पड़ रही है, कुछ पूछो मत।
5: बस पानी पीते रहिए
6: और प्रोग्राम सुनते रहिए।
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मौसमी फल खाते रहिए, तरबूज खरबूज हो गए, जो जिस पानी में यानी कि जिस फ्रूट में भरपूर आपको पानी की मात्रा मिले।
6: बहुत दुरुस्त फरमाया आपने जी
5: जी।
6: हाँ, और यह है कि आजकल तो चाय की बात नहीं करे कोई आए तो, पानी की पहले बात करे।
5: बिल्कुल बिल्कुल, सिकंजी पानी पीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि देखिए आप चाय पी रहे, गर्मी है और गर्मी में गर्मा गर्म चाय, और भी पसीने आ जाएंगे फिर तो।
6: सही फरमाया आपने जी।
5: और गैस पीने से एसिडिटी गैस की भी प्रॉब्लम होती है सर, इसीलिए अब जितना हो सके चाय तो अवॉइड ही करना चाहिए। इस अगर आप चाय पी भी रहे हैं तो लेमन टी पीजिए।
6: जी जी हाँ, चाय तो खैर सुबह के टाइम में पी ले मैं।
5: हाँ, और हाँ। ठीक है जी,
6: नाम है ये सरदाना से मेहरबान अली अंसारी, इरशाद अहमद, बाबू भाई, सफी अहमद, जफर भाई, वलीउल्लाह अंसारी, अजीत कसाना, यूनुस खान, खुशी जी, फरीद भाई।
5: ठीक है, ठीक है जी।
6: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
5: जी। चलिए आपको हम ये गाना सुनवाते, ठीक है।
6: ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम
5: जी। चलिए गाना एंजॉय करते हैं और आप भी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। और देखिए, अभी टेम्परेचर की बात करूँ तो बादल जी है वो भी पूरी टांडों पर है, कहीं पर धूप, कहीं पर गर्मी, कहीं पर बरसात, यानी कि मौसम कभी भी बदल सकता है गाइस। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और गर्मी तो देखिए ऐसी बढ़ती रहेगी, लेकिन अपने ध्यान रखना है, पक्षियों के लिए ध्यान रखना है कि पानी उनके लिए रखते रहें आप छत पर समय समय पर, और चेंज भी करते रहें। और अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है इस गर्मी में। आप बाहर से आ रहे हैं पसीने में, तो घर एकदम आए तो पानी, या फिर आपको नहाना नहीं है बल्कि पसीना सुखाने के बाद आपको पानी और नहाना है, पानी भी पीना और नहाना भी है, एकदम नहीं पीना है। और ठंडा पानी तो इस टाइम बाहर से आ रहे तो बिल्कुल भी ठंडा पानी अवॉइड।

0: करते आप?
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है आप। तो बताइए जी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: घर आ जा परदेसी
0: घर आ जा परदेसी। किसी का नाम लेना चाहेंगी मैम?
1: मेरी नंद है निशा सेठी।
0: जी ठीक है, आप उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, सभी के साथ। ठीक है,
1: जी थैंक
0: ओके जी,
1: यू।
0: ओके ओके जी, वेलकम। चलिए जी, अब हम इस शो से लेते हैं विदा। हम आपको मिलने वाले हैं, यानी कि कल तो संडे है गाइस, तो हम आपको मंडे को मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी मदर्स डे। और कल के लिए क्या प्लानिंग चल रही है गाइस, परसों पूछेंगे हम आपसे। मंडे को पूछने वाले हैं, और अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
2: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
1: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है, क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू। माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आए हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9548088900।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष और
4: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
3: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
4: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
3: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
4: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
3: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
5: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
6: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं।
5: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
6: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
4: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
3: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
4: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
7: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नु रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55

0: 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
1: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
2: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
1: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूं क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
2: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
1: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
2: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
1: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
2: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल जरूरी है, और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
1: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है, हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
1: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
2: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को, इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
1: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
2: कल है।
1: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। जैसा कि दोस्तों हम बातें कर रहे हैं किसानों के बारे में, और दोस्तों आज की खेती पहले जैसी नहीं रही है, सही कहा मैंने अखिल?
3: बिल्कुल सही कहा प्राची जी आपने कि अब जो खेती है वो बहुत ही अपडेटेड, मतलब नई तकनीक और नई तरीके से ना स्मार्ट खेती हो गई है एक तरीके से। और अब ट्रैक्टर भी ना GPS से चल रहे हैं, मोबाइल से पानी ऑन हो रहा है, और किसान ड्रोन से खेत देख रहा है। ड्रोन से अपनी मतलब खेती, वो मतलब एक नया ही टेक्नोलॉजी है, और इसमें तो बहुत ही कहते हैं ना कि आपने स्मार्ट तरीके से उसको यूज किया, ये बहुत ही अच्छी बात है।
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आखिरकार हमारे किसान भी बहुत स्मार्ट हो गए समय के साथ, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ बदलना भी जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कहा। मुझे एक शायरी याद आ गई, छोटी सी दो लाइनों वाली,
2: बिल्कुल सुनाइए हमारी श्रोताओं को।
3: वो मिट्टी में भी भविष्य देख लेता है, हर बीज में उम्मीद बो देता है।
2: अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी शायरी कही, और ये बहुत ज्यादा हमारी किसान भाई को कनेक्ट करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई भी जुड़े रहते हैं।
3: मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, मैं बचपन में जब भी अपने दादाजी के यहाँ जाता था गाँव में, तो मैं देखता था कि वहाँ पे खेती जब होती थी, किसान कैसे लगा हुआ रहता था, मतलब अपने खेत में जुताई में लगा हुआ रहता था, और बैलों से चल रही होती थी जब वो अपने बीज बो रहा होता ना, तो वो अपने खेती कर रहा होता था। और उस समय की जो, उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल पे आप ये नहीं पता कर सकते थे कि भाई इस समय क्या करना चाहिए, कौन से हमारे पास फर्टिलाइजर्स अच्छे हैं जो कुछ जो है वहाँ पे हार्म ना होने दे, या कुछ हम ऐसे नए सीड्स उसमें बोएं कि जिससे जल्दी ज्यादा खेती वो हो। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत दिक्कतें थी उस समय, बिजली की भी बहुत अहम दिक्कत रहती थी। मगर अब जब से, अब मतलब जैसे समय बदलता गया, तो वैसी ही खेती भी थोड़ी थोड़ी उसमें भी चेंजेस आते रहे, उसमें भी स्मार्ट।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि समय के साथ ही जो बदलाव आए हैं, इसने हमारे किसान भाइयों की मेहनत को भी थोड़ा कम कर दिया है, और जो प्रोडक्शन है वो भी, उसका भी काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। पर अभी भी हमारे किसान भाइयों के लिए मेहनत और मुश्किलें अभी भी कम नहीं है।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
4: Namaskar doston. मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियां और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9548088900।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ है अखिल। और दोस्तों, आप इस वक्त कहाँ है ट्रैफिक में? आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और दोस्तों, आप कहीं मत जाइए क्योंकि 2 घंटे तक हम रहने वाले हैं आपके साथ। और दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातें। हम बातें करेंगे दोस्तों आज ऑफिस के प्रेशर, घर की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया की तुलना और भी बहुत सारी बातें।
1: तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हमें रहेगा आपके मैसेज का इंतजार। अगर कहीं भी आप फंसे हुए हैं तो हमें अपडेट करें, हमें बताएं कि कहां ज्यादा है जाम और कहां है सरल सा रास्ता। और मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
1: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए दो योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।

पता नहीं क्यों, अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
5: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप अपने ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी तनाव से गुजर रहा है, क्या कहा प्राची?
6: बिल्कुल सही बता रहे हैं अखिल आप, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑफिस का प्रेशर और घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो गई हैं जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही हैं। पर दोस्तों, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है
5: और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तनाव बुरा नहीं है मगर ज्यादा होना भी खतरनाक है। प्राची, पागबाड़ा से मनोज जी कहते हैं, थोड़ा सा ठहर जाओ, ये जिंदगी भागे जा रही है, जो खुद को भूल गया वही सबसे ज्यादा हारा है।
6: अरे वाह मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात हमारे साथ शेयर की। दोस्तों, और भी बहुत सारे मैसेजेस है जो हम शामिल करते रहेंगे, आप भी अपना मैसेज हमें करना ना भूलें। और दोस्तों, एक बहुत छोटी सी टिप हमारे अखिल आपको बताएंगे, तो अखिल बताइए।
5: छोटी सी टिप यही है कि रोज 10 मिनट खुद के लिए भी निकालिए बिना मोबाइल और बिना शोर के, और हमारे साथ रहिए ट्यून अप।
6: और दोस्तों, अगर ज्यादा हो स्ट्रेस तो कर लीजिएगा ट्यून अप FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप ये सोच रहे होंगे ना कि आर्जेरीना बीच में कैसे आ गई। अरे मैं कभी भी आ जाती हूँ आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल तो प्राची और अखिल जी साथ में हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन ये बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में कि अगर आप ऑफिस का जो प्रेशर है, फिर घर पर आके आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए ना आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हमारा रेडियो कनेक्ट करके रहना है। जो गाने तो होते लाजवाब, साथ ही साथ बातें भी अटपटे चटपटे होते रहते। सो प्राची, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप देखिए, जब भी आप सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, है ना, लेकिन कोई समय आपके लिए ऐसा होता है ना कि बस अब मुझे शांति चाहिए, तो कौन सा वो समय है आपके लिए?
1: मेरे पास वो टाइम है, मैं अक्सर शाम में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि शाम में हम जब आते हैं तो जो हमारा रूम होता है वहाँ जाके जो आराम मिलता है उसकी बात नहीं है। और सच में वो रूम हमारा इंतजार करता है और बहुत सारी बातें हमसे करता है। और सच में जो नींद अपने रूम में आती है वो कहीं नहीं आती।
0: क्या बात है, जिनको नींद भी अपने रूम में ही आती है और बातें भी बड़ी मीठी मीठी करती है श्रोताओं। तो अखिल जी से जानना चाहेंगे कि शाम होते ही आपको क्या करने का मन करता है, जिससे आपको शांति मिले?
2: मेरा तो मन करता है कि मैं शाम होते ही अपनी निकालूं बाइक और निकल जाऊं सैर पे।
0: क्या बात है, मतलब पूरी रात गेड़िया शेड़िया मारने का इरादा रहता है क्या आपको?
2: सही, अभी
0: मतलब नाइट आउट आपको बहुत ज्यादा पसंद है।
2: हाँ, थोड़ा सा नाइट आउट होना चाहिए लाइफ में और थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर मूवी टाइम। मैं एक्चुअली क्या मूवी बफ भी हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई मूवी आज रात देखनी चाहिए तो हम फटाफट जाके टिकट बुक करो और निकल जाऊंगे।
0: चलिए श्रोताओ, हम भी मूवी देखने चलेंगे, लेकिन मिलते हैं आप सभी को म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिलहाल तो मैं इन दोनों को यहीं छोड़कर जाने वाली हूँ, वो गलती से मैं बीच में आ गई थी।

0: में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। श्रीमती गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की जनता को दिल्ली की ओर से बधाई दी। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने बंगाल की जनता विशेषकर महिलाओं और बेटियों के साहस तथा संघर्ष की सराहना करते हुए राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये जीत केवल राजनीतिक आंकड़ों की जीत नहीं है बल्कि बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की भी जीत है।
1: ये जीत उन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की आहुति की यात्रा पे टिकी है। जब आज यहाँ बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है और नई सरकार बन रही है, इन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दी, उन्होंने अपनी जान सोनार बंगला के भविष्य के लिए दी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल की जनता ने अत्याचार और भ्रष्टाचार का दौर देखा, लेकिन अब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव करने का फैसला लिया है।
2: बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी।
3: ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। ईडी ने बताया कि ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। ईडी ने कथित तौर पर दिल्ली स्थित गैर मौजूद फर्मों से कई फर्जी जीएसटी बिल प्राप्त किए ताकि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट पर जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लाभ का दावा किया जा सके। ईडी के अनुसार इन लेन देन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर दंडामुदी वेंकटेश्वर राव उर्फ डीवी राव सहित 3 लोगों को करीब 284 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप था कि डीवी राव के नियंत्रण वाली डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न संस्थानों से फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त किए थे और ऋण चुकाने की धनराशि वैध ऋणदाताओं को लौटाने के बजाय फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। ईडी ने बताया कि आरोपियों ने आरटीजीएस बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी आईपीओ स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में संलिप्त थे और इन्होंने पीड़ितों से कुल 1,22,00,000 से अधिक रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को निवेश, आईपीओ फंडिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर ठगी करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज के 673 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अंतर्गत इस क्षेत्र को ये दर्जा दिया गया है। ये क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन स्ट्रीट के आसपास स्थित है।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रिज प्राचीन अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसे राजधानी का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आरक्षित वन घोषित किए गए रिज क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे देसी तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियों के वृक्ष बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे। अब तक दिल्ली में कुल 4,754 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा मिल चुका है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्रों को भी जल्द आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अतिक्रमण और पर्यावरणीय शरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: दिल्ली सरकार का आयुष निदेशालय चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से लोगों को बिना आर्थिक बोझ के समग्र उपचार और तनाव प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुष निदेशालय डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती करेगा। इस पहल से आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और यूनानी जैसी आयुष पद्धतियों के जरिए एक ही मंच पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 24 में नई जल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में स्वच्छ, नियमित और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी लाइनों को बदलने और जल नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही है। श्री सिंह ने अधिकारियों को जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मॉनसून कार्य योजना 2026 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद ने ताज मानसिंह के पास भूमिगत नालियों और कवर स्टॉर्म वाटर ड्रेन की जांच पहली बार रोबोटिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है। एक रिपोर्ट।
5: श्री चहल ने बताया कि 31 मार्च तक पहले चरण की 100% घास सफाई पूरी कर ली गई थी, वहीं दूसरा चरण 15 जून तक पूरा हो जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से घास सफाई का कार्य किया जा रहा है। परिषद क्षेत्र में पुराना किला, दयाल सिंह कॉलेज, पंचकुइया रोड, हनुमान मंदिर और सत्य सदन समेत 5 प्रमुख संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर CCTV कैमरे और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाहिनी आज केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर क्षेत्र में सफाई अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाहिनी अधिकारियों और कर्मचारियों को सिंधोरा कला गांव में स्थित रेलवे अंडरब्रिज की तुरंत सफाई का निर्देश दिया। श्री वाहिनी गुलाबी बाग स्थित पार्क का उद्घाटन किया और रोशन नारा बाग में झील की सफाई, पंप हाउस निर्माण तथा उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय की मरम्मत करने का आदेश भी दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा दिल्ली की तेजी से बिगड़ती जलीय संपत्तियों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार पर प्रस्तुत एक प्रस्तुति की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि DDA 77 जलाशयों के पुनरुद्धार कार्य को तुरंत शुरू कर रहा है। बैठक में द्वारका, रोहिणी और नरेला सब सिटी में परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार योजना का भी

0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर धूल के स्तर का आकलन करने और शहर में सड़क सफाई और झाड़ू लगाने के कार्यों की समीक्षा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि समीक्षा अभियान में कुल 19 हवाई दस्ते की टीमें शामिल थी, जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 46 सड़क खंडों को कवर किया। दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी और ORS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज दिल्ली में प्रोजेक्ट मेट के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये पहल किशोर विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक CBSE स्कूल शामिल हुए हैं। नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनीश भानवाला ने आज स्वर्ण पदक जीता। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अनीश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ये पदक अपने नाम किया। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे, जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू ने तीसरे स्थान पर रहे।
1: नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे, जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू तीसरे स्थान पर रहे। 50 मीटर पिस्टल IPC मिक्स्ड SH1 सीनियर वर्ग में दिल्ली की भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की सारिका अंदाना दूसरे और हरियाणा के संदीप कुमार तीसरे स्थान पर रहे। जूनियर पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का दबदबा देखने को मिला। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हरियाणा ने रजत और नौसेना की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। 50 मीटर पिस्टल पुरुष वर्ग में हरियाणा के कपिल बैंसला और महिला वर्ग में हरियाणा की केतन मलिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी OPD सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नहीं सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं अखिल और दोस्तों। आज हमने बात की थी मेंटल स्ट्रेस की, पर दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो बता दीजिए अखिल कि वो क्या है टॉपिक हमारे श्रोताओं के लिए।
1: टॉपिक तो मैं अभी बताता हूँ, मगर उससे पहले राजू जी का मैसेज पढ़ता हूँ। राजू जी कह रहे हैं कि MDA में किले के पास थोड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ राजू जी, थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बाकी सबको भी पता चल गया है। और हम बात करेंगे अब अपनी कार की।
0: अच्छा दोस्तों, जैसे कि हमारे दिमाग को आराम चाहिए होता है, वैसे ही हमारी कार की मेंटेनेंस भी जरूरी है। कार की हेल्थ को भी हमें टाइम टाइम पर चेक करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा प्राची, हर 6 महीने सर्विस भी जरूरी है और इंजन ऑयल को भी समय समय पर बदलना जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक बात और मत भूलिएगा कि टायर प्रेशर भी चेक करते रहिए, क्योंकि कम हवा माइलेज कम कर देती है।
1: बिल्कुल, पता चला 2 टायरों में ज्यादा हवा है और 2 टायरों में हवा कम है, तो ना है लेवल बराबर।
0: और बैटरी और ब्रेक की जांच करना भी बहुत जरूरी है।
1: अरे ब्रेक से याद आया, हमें एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, तब तक लिए ट्यून अप रहिए FM मुरादाबादी 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
2: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो CL गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए B ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
0: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी पे, तो गाड़ी पे मैं यही कहूंगा, सफर लंबा हो या छोटा तैयारी जरूरी है, जिंदगी हो या गाड़ी देखभाल भी जरूरी है, तो अपनी कार को क्लीन रखना भी जरूरी है।
5: दोस्तों, मॉनसून में ब्रेकर वाइपर जरूर चेक कराएं, लंबी ड्राइव से पहले कूलेंट और पानी जरूर देखें।
4: प्राची, एक बात बोलूं, रिश्ते भी ना कार की तरह होते हैं, अगर ध्यान ना दो तो रुक जाते हैं।
5: तो इसका समाधान भी हमारे पास है, लिसन मोर रिएक्ट लेस। दोस्तों, हमें रिस्पेक्ट देना भी सीखना चाहिए और लिसन भी करना चाहिए। अगर हम लिसन और रिएक्ट से बचेंगे दोस्तों, जितना ज्यादा लिसन करेंगे और जितना कम रिएक्ट करेंगे उतना रिश्ते ज्यादा अच्छे चलते हैं। और दोस्तों, मुझे इस बात पे एक शायरी याद आ रही है, दोस्तों प्यार में जीत नहीं होती, जहां समझ आ जाए वहां तकरार नहीं होती।
4: क्या बात कही, क्या बात कही प्राची जी, आपने इतनी अच्छी शायरी सुनाई है, बहुत ही बढ़िया। कई बार रिश्तों की परेशानी ही तनाव की वजह बन जाती है प्राची।
5: चलिए दोस्तों, तनाव के बारे में बात करेंगे आगे, और तब तक के लिए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। तब तक के लिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: हेलो, कोई है क्या?
1: हाय,
0: मुझे जिमी से मिलना है।
1: या वन सेकंड। जिमी, हाय।
0: हाय, नताशा, आई एम अ ब्लॉगर। आपके केक पेस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पड़े हैं। आई वुड लाइक टू ब्लॉग अबाउट योर कैफे। डू यू लाइक दैट?
1: आई वुड लव दैट।
0: परफेक्ट, आई सी यू टुमॉरो देन।
1: या श्योर। Excuse me.

0: नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। हम लौट आए हैं आपके साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों मेरे साथ हैं अखिल, और वो बताना चाहते हैं आपको बहुत ही बढ़िया बात। तो बताइए अखिल।
1: दोस्तों जिंदगी हमेशा तीन चीजों पर चलती है, मन की शांति, सुरक्षित सफर और मजबूत रिश्ते।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिल। और दोस्तों स्ट्रेस कम रखिए, अपनी कार भी सेफ रखिए, क्योंकि जब स्ट्रेस कम होगा तो ड्राइव भी सेफ होगी। और रिश्तों को प्यार दीजिए
1: और खुद को प्रायोरिटी भी दीजिए। अगर अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।
0: बिल्कुल, आपकी इसी बात में मुझे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है।
1: सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
0: खुद से प्यार करोगे तो दुनिया भी साथ देगी, खुद से प्यार करोगे तो दुनिया भी साथ देगी, वरना हर खुशी अधूरी सी लगेगी।
1: क्या बात कही प्राची आपने, बिल्कुल बढ़िया। आगे और भी बातें करेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: का नाम रोशन कर सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हम बात करेंगे 25 साल और शादी का दबाव। महिला मंच में ही हम बात करते रहेंगे। बस श्रोताओं आप हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। तो जैसे ही लड़की की एज 24 से 25 साल के आसपास होती है, घर घर में एक ही बात शुरू हो जाती है, अब इसके शादी कर दो। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज सबकी नजरें लड़की की ओर और उनके परिवार पर होती हैं।
0: हाँ रीना, ये बात तो सही कह रही हो आप। कई बार तो ताने भी सुनने को मिलते हैं, अभी तक तो शादी हुई नहीं, लड़की घर में बैठी है। इन बातों से सिर्फ लड़की ही नहीं, उसके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं।
1: लेकिन हमें यह समझना होगा कि शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा फैसला है, और यह फैसला लड़की की खुशी और उसकी इच्छा से होनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना खुशी मैंने?
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद लड़की की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक घर छोड़कर उसे दूसरे घर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। कई बार उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछकर करना पड़ता है।
1: ये तो तुमने 100% सही बात कही है। ऐसे में लड़की को कई बार लगता है कि उसकी आजादी कम हो गई है, लेकिन अगर परिवार समझदार हो और लड़की को सम्मान दे तो शादी के बाद की जिंदगी भी खुशहाल और सुंदर हो जाती है। तो श्रोताओ आप आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ यूं ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लड़की की पहचान और आत्मनिर्भरता के बारे में। आज के समय में सबसे जरूरी है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वह हर परिस्थिति में सामना कर सकती हैं।
0: एग्जैक्टली राइट रीना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शादी हो या ना हो, लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी होना नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है, उसके अपने सपने हैं। और समाज को ये समझना होगा कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं।

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं
0: और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं।
2: Japanese tire expert for over 100 years, Yokohama, ab Moradabad mein. Visit कीजिए Yokohama Club Network. Chawla tires और Pi premium tires की wide range, alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network, Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: नमस्कार बहनों, मैं हूं आपके साथ आरजे रीना और आज हमारे लिए ना एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं महिला मंच, जहां पर हम खाने पीने की बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए शो है, बल्कि पुरुष भी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के लाइफ में ना, यानी कि खाने पीने के लेकर बहुत सी दिमाग में बातें चलती रहती है कि आखिरकार इस गर्मी के मौसम में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमें आराम मिले, बॉडी को ठंडक मिले और हम भी आराम से रह पाए। और ऐसी ढेर सारी आपको टिप्स बताते रहेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट, आपका अपना फेवरेट सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है और मैं हूं आपकी सहेली आरजे रीना और आप शो सुन रहे हैं महिला मंच, जिसमें हम महिलाओं के खाने पीने के बारे में बातें करेंगे। अक्सर क्या होता है ना, महिलाएं पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं, बच्चों और घर के काम में लगी रहती हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो सबसे आखिरी में खुद को रखती है। कभी जल्दी में खाना छोड़ दिया, कभी ठंडा खाना खा लिया और कभी पूरा दिन चाय बिस्किट पर ही निकाल दिया। लेकिन याद रखिए, अगर घर की महिला स्वस्थ रहेगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे महिलाओं को रोज अपने खाने पीने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और घरेलू खाने भी बड़े मजेदार होते हैं, बड़े पौष्टिक होते हैं, जिनसे हमें एकदम भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है।

एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत हो गई हूँ सखियों, और आप सुन रहे हैं महिला मंच, यानी कि महिलाओं के खाने पीने के बारे में हम बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद सबसे जरूरी है कि शरीर को पानी मिले। एक गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इससे शरीर की सफाई होती है और पाचन भी अच्छा रहता है। इसके बाद नाश्ता कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नाश्ते में आप ये चीजें ले सकती हैं, दलिया, पोहा, पराठा दही के साथ अंकुरित दालें, फल जैसे केला, सेब या पपीता। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर को ऊर्जा और ताकत मिले। याद रखिए, खाली पेट ज्यादा देर तक रहने से कमजोरी, चक्कर और थकान हो सकती है। तो सुबह का नाश्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भी बातें करेंगे, बस आरजू रीना के साथ बने रहिए इस महिला मंच शो में।

हां जी, एक बार और स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो, यानी कि महिलाओं के खाने पीने की बातें लेकर हम आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गए हैं। तो दोपहर का खाना संतुलित होना चाहिए, यानी उसमें हर तरह का पोषण होना चाहिए। थाली में कोशिश करें कि ये चीजें जरूर हो, दाल या राजमा, हरी सब्जी, रोटी चावल, सलाद, दही। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी और तोरई शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। कई महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, इसीलिए हरी सब्जियां और दालें खाना बहुत जरूरी है। और बहनों, खाना ही नहीं बल्कि पानी पीना भी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर मौसम गर्म हो तो पानी और ज्यादा पिए। बीच बीच में हल्का नाश्ता भी लिया जा सकता है, जैसे फल, मूंगफली, भुना चना, नारियल पानी। ये चीजें शरीर को ताकत देती हैं और थकान कम करती हैं। तो एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

कीजिए, आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।